मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि तदनुसार 9 मई सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाज

करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

खुशी को पाने का रास्ता है प्रभु, प्रभु का चिंतन। भक्तिभाव में केवल निष्ठा की आवश्यकता होती है, क्रोध से नफरत का भाव और भी बढ़ता है, अतः हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए।

हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि प्रभु की शरण में हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जीवन में जो भी मिलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप कविता पौडवाल, पंडित जसराज, किशोरी अमोनकर और सुरेश वाटकर के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओह।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है विचार विंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं देवराहा बाबा के विचार।
4: भारत अनादि काल से धर्म प्रधान देश रहा है। यह भाव अपने पूज्य श्री देवराहा जी महाराज बराबर व्यक्त किया करते थे। यहाँ धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय समय पर साक्षात परमपिता परमात्मा विविध स्वरूपों जिसने मुख्यतः मानव शरीर में भारत ऐसे पवित्र देश में अवतार धारण कर अनेक लीलाएं की हैं, जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में हुआ है। इसी परंपरा में भगवान श्री राम तथा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर धारण कर अनेक अलौकिक लीला से विश्व में अपने कार्यकलापों से लाभान्वित

0: संपूर्ण जगत को किया है। वहीं धर्माचारी संत महात्मा ऋषि महर्षियों के रूप में विलक्षण महापुरुष मानव स्वरूप में जैसे आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, आदि जगत गुरु अपने रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, अनेक आचार्य आदि की समान ही इस पुण्य पावन भूमि में ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज का भी अवतार अपने आप में इस धराधाम पर एक साधारण परिवार में एक विलक्षण बालक के रूप में पदार्पण कर किया हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका इस संसार में सशरीर प्रादुर्भाव जन्म तिथि का वास्तविक पता किसी को नहीं है। जैसा कि सदैव से विरक्त योगी संतों की यही स्थिति रही है, जो वास्तव में जन्म स्थान जन्म तिथि तो भौतिक आदि मानव का प्रतीत साधारण सर्व मानव जीवन को अपने पूर्व परंपरा के अनुसार ज्ञात हो जाता है। यहाँ पुरुषों का प्रादुर्भाव तो किसी न किसी के कल्याण हेतु यह होता है, वह संत के रूप में, महामानव के रूप में या साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में। बाबा तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार और हिमालय की अनेक तराइयों में बद्रीनाथ आदि की आसपास वह विचरण करते हुए भक्तों को केवल दर्शन और कुछ शब्दों के आशीर्वाद से लाभान्वित किया करते थे। बाबा तीर्थराज प्रयाग माघ मेला से प्रस्थान कर वह वृंदावन में स्थिर होकर के और अनेक भक्तों से कहा कि अब हमारा कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अब हम अपने नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपने साथ रह करके बाल लीला में आनंद ले रहे हैं। और उसके पश्चात वास्तव में बाबा फिर कहीं भी वह प्रस्थान भ्रमण का कार्य स्थगित कर दिया। आज बाबा अपने इस संसार में भौतिक स्थिति में आप हम सबको सशरीर नहीं दर्शन दे रहे हैं, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना और बराबर बाबा कहा करते थे कि बच्चा की संपूर्ण समस्याओं का समाधान लौकिक भौतिक आध्यात्मिक अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं भगवान का नाम लो, गुरु की परंपरा का आदर करो और आध्यात्मिक जीवन में साधना आराधना करो, गौ माता की सेवा और गौ माता की उपकार से अपने जीवन में गो भक्त, मातृपित्र भक्त, आचार्य भक्त, गुरु भक्त, मातृपित्र के ऋण से उऋण होने का संकल्प करो और अपने जीवन में अपने किसी न किसी इष्ट का अपने अंतःकरण में प्रधान स्थान देकर के उस इष्ट का चिंतन, साधना, आराधना और ध्यान अवस्था में अपने अंतःकरण में विराजमान करो। इसी से तुम्हारा परम मंगल कल्याण होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे देवराहा बाबा के विचार। विचार विंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। डॉक्टर हरीश चंद्र से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत।

0: बा किसान भैया बहनी है रे, अगर दलहन के फसल लेवा चाहें तो का करें, खेत की तैयारी कैसे रहा है और कौन कौन प्रजाति के जो बीज चयन बा ओका कैसे करें। आज ये सब के जानकारी दे के बदे अपने बीच में डॉक्टर हरिश्चंद जी आए बाटें। आप विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। सबसे पहले हमारे किसान भैया हरे के ये बतावें कि जो खरीफ में दलहनी फसल ले चाहें तो उनका खेत की तैयारी कैसे करें।
1: किसान भाइयों, खरीफ में दलहनी फसलों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें मुख्य रूप से अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया प्रमुख फसल है। इसकी खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जब आप खेत तैयार करें तो खेत का जो चयन करें, खेत का चयन ऐसे स्थानों पर करें कि जहाँ पर पानी न लगता हो, जल निकास का समुचित प्रबंध हो और ये ऐसे जगह पे बुवाई करना चाहिए। और जो मिट्टी हो आपकी खेत की, जब चयन आप करने लगें तो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी होना चाहिए। इसके लिए दलहनी फसलों की सर्वोत्तम होता है। और खेत की तैयारी की जहाँ तक बात है तो एक जुताई मिट्टी पलट हल से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से हम करते हैं। जुताई करने के उपरांत हम जो है उसको अच्छी तरीके से खरपतवार मुक्त कर लें, घास की हटा दें। इसके बाद जो है उस खेत में अगर हम मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी की जांच भी करा लें, क्योंकि लगातार हम खेती कर रहे हैं। और दलहनी फसलों में जैसा कि आप जानते हैं, सारे किसान भाई जानते हैं कि हम खाद की मात्रा बहुत सीमित मात्रा में देते हैं, जिससे हमारे खेतों में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की बहुत कमी पाई जा रही है। कि दलहनी फसलों में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान है। और हम अगर इस प्रयागराज मंडल के आसपास के क्षेत्रों में देखें जहाँ पे सीरियल क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे धान धान्य वाली फसलें, धान और गेहूं उगाते हैं या इस तरह की, तो सल्फर की काफ़ी मिट्टियों में कमी पाई जा रही है। और ये सल्फर दलहनी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है और उसकी हम पूर्ति कर देंगे तो हमारी जो फसल होगी आने वाले समय में वो बहुत अच्छी होगी।
0: जी
1: इसके
0: डॉक्टर,
1: साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम फसल उगा रहे हैं, जिस खेत में दलहन का हम खेती करने जा रहे हैं, उसमें दीमक की समस्या नहीं है या जड़ की सूनी की समस्या नहीं है, या उस क्योंकि अधर तक किसान जो हमारे ये देखा गया, प्रायः देखा गया है कि जहाँ पे हमारे किसान जिस खेत में दलहनी फसल उगाते हैं उसी खेत में रिपीट करते रहते हैं, तो एक दलहनी फसलों की उकठा की बहुत बड़ी समस्या है।
0: अच्छा
1: तो इसका भी हमको ध्यान रखना है कि हमको जब खेत का चयन करने लगें तो दलहनी फसलों का जहाँ पे उकठा की समस्या हो, उकठा की एक, तो उस खेत का चयन 3-4 वर्षों का फसल चक्र अपनाएं। जब
0: अच्छा
1: हम 3-4 वर्षों का फसल चक्र अपनाएंगे तो उकठा की समस्या से दूर पा जाएंगे। अगर हमारे खेत में दीमक की समस्या है तो, या जड़ की सूड़ी है, तना छेदक है, इन सारे कीटों का सफेद गिटार है, इन सारे चीज़ों का अगर आपके ज़मीन में किसी तरह से प्रकोप है तो उसको जो है नीम की खली के माध्यम से, बिवोरिया जो है आपका बायोपेस्टिसाइड है, इसके माध्यम से इसकी जो है रोकथाम कर सकते
0: कर
1: हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे अभी किसान भैया आ रहे जायद में मूंग और उड़द ले हुई हैं, अगर वो फिर अरहर ले चाहें तो क्या सुझाव होगा।
1: देखिए, जो हमारे खरीफ में अगर मुख्य रूप से देखें, अरहर ही दलहन फसल मुख्य फसल है खरीफ की। और इस अरहर में कुछ हमारे पास अगेती प्रजातियां हैं, कुछ पछेती प्रजाति। अगेती प्रजातियां लगभग 40 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें कुछ अगेती प्रजातियां हैं, जैसे पारस है, यूपीएस 120 है, पूसा 922 992 है, टाइप 21 है। ये प्रजातियां हमारी अगेती प्रजातियां हैं, लगभग 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती हैं और 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारी जो पछेती प्रजातियां हैं, लगभग इनकी जो फसल अवधि होती है लगभग 270 दिन के आसपास, 250 से 270 दिन के आसपास होती है। ये कुछ प्रजातियां हैं जैसे पूषा 9 है, आजाद है, पीडीए है, 11 है, मालवी विकास है, मालवी चमत्कार है, नरेद अरहर 2 है। इस तरह से प्रमुख प्रजातियां हैं जिनकी उत्पादन

0: लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको पैदावार प्राप्त होती है। किसान भाइयों, आपको एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, जब अरहर की हम फसल की बुआई करने जा रहे हों तो हमको बीज को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हम बाहर से बाजार से बीज ले रहे हैं तो अधिकतर बीज जो हमको मिलते हैं उपचारित मिलते हैं, लेकिन कहीं पे अगर आप घर का बीज का प्रयोग कर रहे हैं या आपको संशय है तो आपको 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 4 ग्राम टाइकोडर्मा नामक दवा से बीज को प्रति किलो उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के पश्चात जब आप बुआई करने जा रहे हों, जो दलहनी फसलों के लिए विशेष प्रकार के होते हैं जैव उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन देने वाले जैव उर्वरक हैं और फास्फोरस देने वाले जैव उर्वरक हैं, मार्केट में इस समय पोटास के भी घोलक के रूप में पोटास प्रोवाइड करने वाले भी जैव उर्वरक उपलब्ध हैं, तो ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस देने वाले जैव उर्वरक हैं इनसे बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। एक जो है 250, अब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है या पाउडर फॉर्म में, जहाँ पे आपको उपलब्ध है, अगर पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है तो करीब 20 किलोग्राम बीज के लिए एक पैकेट पर्याप्त है राइजोबियम कल्चर। और उसी प्रकार फास्फोरस देने वाला जो PSB है, फास्फोरस सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया का, जो वो भी जो है उससे भी उपचारित कर करके आप बुआई करें तो इससे बहुत अधिक आपका जमाव अच्छा होगा और आने वाले समय में इसके पौधों के विकास अच्छे होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे जैव उर्वरक के बात करते रहे बीज उपचार के लिए, अगर ओके बाद इसमें खाद के संतुलन कैसे रहना चाहिए?
0: कि जब भी आप खेती कर रहे हैं तो मिट्टी जांच कराएं, लेकिन अगर मिट्टी आप जांच नहीं कराए हैं तो 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 220 किलोग्राम सल्फर, और अगर सल्फर की उपलब्धता ना हो तो 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डालें तो आपका जो खाद का प्रबंध है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कुछ में प्रमुख रोग उसे बचे का तरीका रहा?
0: देखिए कि फसल जब आपकी परिपक्वता के समय में आती है तो जैसे मैंने बताया कि आपके एक उकठा रोग की बहुत बड़ी समस्या आती है दलहनी फसलों में, तो वहाँ तो हम फसल चक्र का अपनाएं। दूसरा, बुआई के समय जैसे मैंने कहा था कि टाइकोडर्मा नामक बीज से उपचारित करें, टाइकोडर्मा से, जिससे उससे समस्या पा जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें दलहनी फसलों में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे फली छेदक है, तना छेदक है, या फली को खाने वाले थ्रिप्स हैं, इस तरह से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का आक्रमण आपके फसलों पर होता
1: हो
0: है।
1: जाता
0: आपका इमिडाक्लोरोप्रिड है फसल सुरक्षा के नाम पे, और डाइमिथियोट 30 CC है, इसका 1 लीटर लेकर के 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो जो ये कीड़े की समस्या है इससे निजात मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम अपने फसलों की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ये फसल है वो सुरक्षित होगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी रहे। खरीफ में दलहनी फसलों की खेती के का का तैयारी करें, बीज चयन का करें, और सबसे बड़ी चीज़ बाकी कैसे उका फसल चक्र अपनावें जैसे कि अन्य कोई बीमारी न लग पावे। निश्चित बाकी किसान भैया अरे का सुनिए बुनिए और गुनिए, जैसे कि अच्छी पैदावार मिल सके और 4 पैसा की आमदनी भी बढ़ सके। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें, डॉक्टर हरीश चंद्र से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुधा यादव की वार्ता, गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल।
1: आज मैं आप सबसे गर्मी में त्वचा में होने वाले विभिन्न प्रकार के चेंजेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे तो हर मौसम में त्वचा की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन गर्मी

0: के मौसम में खासकर त्वचा की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बढ़ते तापमान का असर सबसे पहले त्वचा पर ही पड़ता है और सबसे ज्यादा असर भी त्वचा पर ही आता है। क्योंकि गर्मियों की धूप ज्यादा तीखी होती है, इसलिए सीधी धूप से बचने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बाहर निकलने का वक्त कोशिश करें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जितना हो सके बाहर की धूप से बचाव करें, क्योंकि इस समय में पराबैंगनी विकिरण सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो संभवतः कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा त्वचा का भाग ढककर निकलें या उपयुक्त सनस्क्रीन का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की त्वचा हो, सनस्क्रीन के प्रयोग से परहेज ना करें, क्योंकि ये आपकी त्वचा को सनबर्न होने से बचाती है और त्वचा को कांतिमय बनाए रखने में मदद करती है। गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है, अतः कोशिश करें कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा अन्य पेय पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, कुछ फल जो कि गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, खीरा, ककड़ी, मौसमी फल, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी त्वचा को की नमी बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। त्वचा कांतिमय बनी रहती है और शरीर में लू लगने का भी खतरा कम हो जाता है। दिन में कोशिश करें कि 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और 2-3 बार मुंह धोएं। इस प्रकार से हम त्वचा के तापमान को कम रख सकते हैं और लू लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही त्वचा की होने वाली बीमारियां जो कि खासकर गर्मी में होती हैं, उमस की गर्मी में, जिन्हें हम घमौरिया कहते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए पौष्टिक से भोजन का सेवन बहुत जरूरी है। खाना संतुलित मात्रा में ही लें और इसमें ताजे फलों एवं हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा रखें। तली हुई चीज़ों से और बाहरी खाने पीने की चीज़ों से बचाव करें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ठंडे पदार्थों का सेवन करें, पर साथ ही यह इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ये फिर आपकी अंदर के सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। त्वचा को साफ ताज़ा हवा की हमेशा ज़रूरत होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में भी यह ध्यान रखें कि सुबह सुबह आधा घंटा ताजी हवा में सैर करें और 10 मिनट की धूप का सेवन जरूर करें। गर्मियों में ज़्यादा पसीने की वजह से त्वचा में नमी रहती है, अतः इसकी नियमित सफाई ज़रूरी है, नहीं तो फंगल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में ये इन्फेक्शन पसीने की वजह से आसानी से लग सकते हैं, तो त्वचा की साफ सफाई का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन कोशिशों से आप इस तरह के इन्फेक्शन से अपने को बचा सकते हैं और गर्मियों में होने वाली कई तरह की बीमारियां जैसे कि धूप से एलर्जी होना, सन एलर्जी होना, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पसीना सूखता है, और ध्यान रखें कि कॉस्मेटिक्स का भी कम से कम इस्तेमाल करें जो कि त्वचा में एलर्जी उत्पन्न होने से बचाव करेगी। इन बातों का ध्यान रख के हम त्वचा की कांति बनाए रह सकते हैं और अपने सौंदर्य को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती हैं, जैसे खासकर बच्चों में देखा जाता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या ज़्यादा होते हैं, बड़ों में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो इन सब के लिए अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कोई तकलीफ आपको होती है तो किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर उसका सही इलाज करें, ना कि अपने आप या कहीं से दवा लेके लगाएं, क्योंकि वो आपकी बीमारी को बढ़ा भी सकती है। तो श्रोताओं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी के मौसम में भी आप त्वचा की तकलीफों से दूर रहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुधा यादव की वार्ता, गर्मी के मौसम में त्वचा की देखभाल, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीटर वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 9:30 पर सुनिएगा संस्कृत भारती, रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 बजे श्री रामचरितमानस से संगीत

में पाठ 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित विदुर मलिक का धमार गायन और दिन में 12:15 पर नजीर अहमद खां का सारंगी वादन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर प्रीति मिश्रा के स्वर में भजन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर लोकमाद्री कार्यक्रम में हरीश चंद्र पांडे और विनीता तिवारी के स्वर में लोकगीत सुनिएगा। और दोपहर 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे बचौलाल यादव, रीता देवी और शैलेश कुमार शर्मा। सुबह 10:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। प्रस्तुति होगी दीपक राय की। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनेगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहने सुनेंगी संगीता राय के स्वर में लोकगीत, साथ ही आप सुनेंगे नीरजा निषाद की वार्ता, जलवायु परिवर्तन का सामान्य जन मानस पे असर। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगत बहादुर यादव और साथी। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजेश मिश्र की वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर और उनका भारत। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिबाण छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

अभी आप श्री रामचरितमानस संगीत में पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से ही भजन, लीजिए सुनिए लगान फिल्म में उदित नारायण और लता मंगेशकर को। संगीत दिया है ए आर रहमान ने, रचना है जावेद अख्तर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए सीमा फिल्म में मन्नाडे को। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और रचना है शैलेंद्र की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सीमा फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
1: भारतीय आर्काइव्स
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में

0: शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सबके लिए बहुत आनंद का। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
2: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि आरडीएस

0: संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: दूरकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं पंडित विदुर मलिक का धमार गायन, राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विदुर मलिक का धमार गायन राग था भटियार। आपके साथ तबला संगत कर रहे आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे श्री राम जी उपाध्याय, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने

0: दिवसीय अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में

0: रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दिस मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह टू अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड

0: कि सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि ये जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकसीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में BJP कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बढ़तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का अंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद व शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निज़ाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदादी दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरक वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फ़रोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले BJP वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
6: फसा। अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, खुश होंगे। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है खुद को दें प्राथमिकता। हमारे जीवन में इतनी भागदौड़ होती है कि हम

महिलाएं अपने लिए तो बिल्कुल समय ही नहीं निकाल पाती। श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है वो है खुद को दें प्राथमिकता, मतलब अपने लिए समय निकालना, अपनी सीमाएं तय करना, खुद के साथ नरमी से पेश आना। आपकी ज़रूरतें भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितनी कि आपके घर के अन्य सदस्यों की। खुद को प्राथमिकता देकर आप अपनी अच्छी देखभाल कर सकती हैं। श्रोताओं, हम महिलाएं घर को, काम में, बच्चों के स्कूल, पति के ऑफिस से लेकर सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं और इस बीच हम कहीं ना कहीं खुद का ध्यान रखना बिल्कुल भूल रहे हैं। खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, जिससे आप अपने काम और रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल गए हैं। हम दूसरों परिवारों की ज़रूरतों को जितना पहले महत्व देते हैं, शायद हम अपने आप को उतना देते तो हम शायद मानसिक तौर पर बीमार और अवसाद के रोगी ना होते। हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर आपके जीवन की हर चीज़ टिकी हुई है।

श्रोताओं, लौटते हैं फिर अपने कार्यक्रम में। जब आप अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, या मानसिक और शारीरिक कमज़ोरी आपकी उत्पादकता, मनोदशा और दूसरों के प्रति बद्धता को प्रभावित कर सकती है। और जब आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं तो आप तनाव, चिंता को बेहतर ढंग से संभाल पाती हैं। अपने आप को भी समय दीजिए जिस तरह आप अपने घर के अन्य सदस्यों को देती हैं। सबसे अच्छा साधन है आप अपने लिए समय निकालकर संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, घूमने जाएं, काम के बीच में 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, और इस टाइम आप फ़ोन का भी यूज़ ना करें। भरपूर नींद दीजिए। जब आप हेल्दी रहेंगी तो घर के सभी सदस्यों को हेल्दी और हैप्पी रख पाएंगी। जब आप अपने आप के लिए समय निकालेंगी तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। श्रोताओं, जब हम बहुत बिजी होते हैं तो बहुत ही थकान और खुद को चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय निकाल कर अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सर्वोत्तम बना सकते हैं।

श्रोताओं, ये तो रहे हमारे आज जो विषय था हमारा, खुद को दें प्राथमिकता। और अब हमारे फेसबुक पर हमें नीरा त्रिपाठी जी ने ये सुविचार लिख भेजा है। कहती हैं, स्वयं की मस्ती में जीवित व्यक्ति को किसी की वाह वाह की ज़रूरत नहीं होती। हम रहेंगे या नहीं यकीन नहीं, पर जो हमने जिया वह कहीं ना कहीं दर्ज रहेगा। हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच ही जाती हैं। बहुत अच्छी बात नीरा त्रिपाठी जी ने लिखकर हमें भेजा है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने सुविचार। आपका नाम शामिल करेंगे हम सुबह 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर। श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि मौसम तो अभी ठीक है, मतलब गर्मी कम है, लेकिन अभी गर्मी का सामना तो करना ही पड़ेगा। और बदलते मौसम में अपने बच्चों और अपना और अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखिए और अपने आप को प्राथमिकता ज़रूर दीजिए। तो श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए आक्रमण फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचना है आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जमाना दीवाना फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना है समीर की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना जमाना दीवाना फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शांति और अमेठी जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
2: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती

0: के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेडा आरबी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा, जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाए जाने वाले प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल सुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7,000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की निकाड़ बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है, वही पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
1: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीच की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
3: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी

0: अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश का अंक।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

प्यार करना, ये सब मुझे हल्का हल्का याद है। शक्ल इसलिए नहीं भूल पाया कि जमाना कैमरे का था। हाँ, तो जब मैं 3 साल का था कि अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो अक्सर अक्सर काम करते लेट जाया करती, फिर वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। कभी उनके हाथ में सुई लगी होती तो कभी सर में पट्टी बंधी होती। रफ्ता रफ्ता वो लगातार बिस्तर पर रहने लगी। मैं और मेरी बहन, जिसकी उम्र 5 साल के करीब रही होगी, अब हमें कभी दादो और कभी नानो के यहाँ रहना पड़ता। अब जब भी मम्मी की तबीयत बेहतर होती और हम दोनों के करीब होती, हमें कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाया करती। कभी जंगल और जानवरों की, कभी परियों की, कभी फरिश्तों की, कभी नबियों की। फिर उन्होंने एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ किस्म की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिसे सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत हैरान हुए। वो कहानी उन्होंने फिर हर रोज सुनाना शुरू कर दी, जैसे उस कहानी के किरदार बन गए। अब हम वो कहानी मम्मी को सुनाया करते थे। इन दिनों हम तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे, हालांकि मम्मी की सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अब उन्हें कई कई दिन डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ता था, लेकिन जब भी उनके करीब जाते, मुस्कुराकर हमारा जहन बदलने लगती और बातें करते करते किसी न किसी तरह हमारी बातों का इख्तिताम सफेद पैराशूट वाली कहानी पर होता। हाँ, उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए मम्मी हर रोज कुछ नई बात शामिल कर देती। वो कहानी कुछ यूं सुनाया करती थी कि बच्चों, एक नई कहानी सुनो। जैसे हमारी ये जमीन है और आसमान है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे लिए और जमीन और आसमान यानी दूसरी दुनियाएं बनाई हैं। जिस तरह हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी, बाइक या जहाज पर सफर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। जिस तरह पानी में बगैर तैराकी का लिबास पहने हम तैर नहीं सकते और अलग किस्म के कपड़े पहने बगैर हम तैराकी नहीं कर सकते कि डूब जाने का खतरा होता है, बिल्कुल उसी तरह उस दुनिया में जाने के लिए सफेद पैराशूट पहनना पड़ता है। जाने वाले को एक खास किस्म के बेड पर लेटना पड़ता है। वो नहा धोकर सफेद पैराशूट पहनता है। उसे खामोश भी रहना पड़ता है और आंखें भी बंद रखना पड़ती हैं। फिर एक और खास जगह होती है, जैसे जहाजों के उड़ने की जगह खास होती है, बिल्कुल वैसी ही उसका भी एक मैदान होता है और उस दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। सब लोग मिलकर उसे उस मैदान में छोड़ आते हैं। फिर अल्लाह ताला सफेद परों वाले फरिश्ते को गाड़ी लेकर भेजते हैं और लोग वहां दूसरी दुनिया में जाकर रहने लगते हैं। हम दोनों बहन भाई मम्मी का मुंह हैरत से तका करते। फिर मैंने हैरानी से पूछा, फिर ये क्या हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद वहां उस दुनिया में रहने चली जाऊं? हमें लेकर जाएंगी? मेरी बहन ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं, वहां छोटे बच्चे नहीं जाते। तो फिर आपके बगैर कैसे रहेंगे? उसने फिर सवाल किया। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि बिल्कुल आप जैसे मेरे बच्चे वहां भी हैं, बल्कि उनके नाम भी यही हैं जो अभी तक मेरे बगैर रह रहे हैं। अब मैं उनके साथ रह लूंगी। आप लोग पापा को तंग नहीं करना, रोना धोना बिल्कुल मत, और जो मैं समझाती हूँ उसे याद रखना और अच्छा इंसान बनना, खूब पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनकर दिखाना। मैं वहां की दूरबीन से देखती रहूंगी। हो सकता है आप लोग अच्छे बच्चे बने रहें तो मैं वापस आ जाऊं, पर मेरी एक शर्त है, इस बार मैं शक्ल बदल कर आऊंगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वो मुस्कुराकर हमारे पेटों में गुदगुदाती तो समझ गए ना, मेरे दोबारा आने पर मुझे अच्छे बच्चे बने हुए मिलना और खा पी कर थोड़े बड़े भी हो जाना। अशु, तुम तो मुझे निकाल लेना, बड़े हो जाना पापा की तरह, वो फिर गुदगुदाती। और हाँ, ये टॉप सीक्रेट है, अभी किसी को बताना मत। वो हमारे कान में फुसफुसाती और फिर सीने से लगाकर भीज कर प्यार करती। जब वो हमें अलग करती तो लगता कि रोई हैं, लेकिन वो तो मुस्कुरा रही होती थी। इस कहानी ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे उस दिन का इंतजार रहने लगा कि कब वो दिन आएगा और मम्मी जाएंगी उस दुनिया में, जहाँ बहुत खूबसूरत पार्क होंगे, तितलियां होंगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, पेड़ होंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजा करेंगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मम्मी ने एक दिन अचानक ही आंखें बंद कर ली। उनके हाथ की लगी हुई सुई निकाल दी गई और एक सफेद चादर उन्हें उड़ा दी गई। मैंने चुपके से अपनी बहन के कान में कहा, क्या मम्मी आज दूसरी दुनिया में जा रही हैं? उसने मुझे देखा और कहा, लग तो रहा है, लेकिन किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है, मम्मी ने मना किया था। तो फिर सब रो क्यों रहे हैं? और क्या आज हमारे घर मम्मी के जाने की दावत है? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। दादी ने मुझे बुलाकर सफेद कुर्ता

0: कुर्ता पजामा पहनाया और बड़े प्यार से समझाया कि अशु बेटा, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास जा रही हैं, अब नहीं आएंगी, उन्हें प्यार कर लो और देख लो। पता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। मैं उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया क्योंकि मुझे लोगों के हुजूम से घबराहट होने लगी थी। फिर वो सब होने लगा जो मम्मी ने कहानी में सुनाया था। कई घंटों की तैयारी के बाद उन्हें सफेद लिबास, जैसे वो दूसरी दुनिया में जाने का पैराशूट कहा करती थी, पहनाया गया और लोग इकट्ठा होकर उन्हें उस मैदान में ले आए। मैं भी पापा की उंगली पकड़े साथ साथ था। अब मुझे तजस्सुस था उस जगह को देखने का जहाँ से फरिश्ते उन्हें लेकर दूसरी दुनिया में जाते। ये तजस्सुस बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कोई बच्चा जहाज देखने की तमन्ना करता है कि वो कैसे उड़ जाया करता है। वहां की भीड़ में मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा था और फिर कामयाब भी हो गया। सबकी टांगों के बीच से घुसकर मैं बिल्कुल उनके करीब हो गया। पप्पा बराबर हिचकियों से रो रहे थे और मैं हैरानी से उनका मुंह तके जा रहा था कि मम्मा को तो कहानी सुनाकर गई थी और फिर ये सब। कुछ ऐसे बाद जैसा कि मम्मी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी, वो आ भी गई, लेकिन उनकी शक्ल भी बदल गई थी और वो खुद भी। फिर भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी बहन जो अब 9 साल की होने को आई थी, चुप चुप सी थी। मैं सुर्ख जोड़े में लिपटी अपनी मम्मी के पास घुसा चला जा रहा था और चाहता था कि वो पहले की तरह भीज कर मुझे सीने से चिमटा ले। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरी रूह को वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। मम्मी की शक्ल भी बदल गई थी, साथ में काफी बातें भी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ पर मेरी माँ की बनाई हुई कहानी खुलती गई और उसके सुनाने का मकसद भी समझ में आता गया। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी जिंदगी से सफेद रंग न निकल सका। मेरी दुल्हन नीलो भी सिल्वर कलर के जोड़े में सफेद पेंट वाले कमरे में मुझसे मिली थी और मेरी शादी का सूट भी सफेद शेरवानी का ही था। मम्मी की सुनाई कहानी का मकसद पूरा हो चुका था और मैं एक कामयाब खुशबाश इंसान और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। नीलो बहुत अच्छी हमसफर साबित हुई। उसके साथ से जिंदगी ने कई रंग धनक देखे जिनकी रोशनी ने मुझे अंदर तक नूर से भर दिया। नीलों के साथ जिंदगी का सफर कहीं हसीन तो कहीं खारदार तो कहीं नर्म मिट्टी पर चलते गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी जिंदगी की शाहराह उसे हम सफर के साथ रंगीन थी, लेकिन फिर भी इस सफेद रंग को अपनी जिंदगी से ना निकाल सका। सफर की मुसाफत के भी 40 पड़ाव गुजर चुके थे। अब न जवानी रही थी और न पूरा बुढ़ापा, लेकिन सफर अभी बाकी था कि एक दिन अचानक ही नीलो मेरा साथ छोड़ गई। मम्मी की सुनाई कहानी मेरे घर में फिर शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने 65 साल पुरानी कहानी रील की तरह चल पड़ी और मैं अपनी नीलो का पैराशूट निकालकर उसे बाहर दे आया।
1: सफेद पैराशूट। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत शमसी से उनका अफसाना। समीन, यह हकीकत है कि सरजमीन रुहेलखंड में शायरों और अफसाना निगारों की कमी नहीं। दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक कई ऐसे शायर और अफसाना निगार हुए हैं जिनकी तख्लीकात पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। तो समीन, आइए आज अदब की इस खास सिंफ शेर व शायरी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शायरी का ताल्लुक हमारे जज्बात से है, फिक्र से है और ख्याल से है। मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, पुरसोज गीत हैं ये किसी दर्द ला दवा के। तो आइए समाप्त करते हैं सिलसिला कलामी शायर के तहत ये खूबसूरत कलाम। आज के हमारे मेहमान शायर हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन।
2: आइए हजरात, गजल का मतलब आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ। समात करें हजरात।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए प्रीति मिश्रा के स्वर में भजन।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है।

0: शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं हरीश चंद्र पांडे और साथी और विनीता तिवारी। पहले आपको सुनवाएंगे हरीश चंद्र पांडे और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप विनीता तिवारी के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए इतिहास फिल्म का ये गीत। हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में संगीत दिया है दिलीप सेन, समीर सेन ने, और रचना है समीर की।

लीजिए अब सुनिए ओमकारा फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। संगीत दिया है विशाल भरद्वाज ने, रचना है गुलजार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए आप सुनिए दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, और रचना है समीर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेवफा का ये गीत। गुलाम अली की आवाज़ थी, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और रचना थी समीर की। और लीजिए अब सुनिए दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है हेमलता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुना दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गीत हेमलता की आवाज़ में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आकाशवाणी प्रयागराज के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपकी साथी वंदना श्रीवास्तव और आज हम अपनी यादों के झरोके से एक ऐसे व्यक्तित्व को झांक रहे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अभिनय की परिभाषा को एक नया अर्थ दिया है, जिन्हें अभिनय विरासत में मिला है लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शबाना आज़मी की।

श्रोताओं, मासूम का वो किरदार हो या अर्थ की पूजा, शबाना ने उन भावनाओं को जिया है जिन्हें शब्द नहीं दिए जा सकते। उनकी आंखों में वो खामोशी है जो बड़े बड़े संवादों पर भारी पड़ती है।

श्रोताओं, शबाना आज़मी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जहाँ तक उनकी फिल्मों की बात है, बाजार हो या एक डॉक्टर की मौत, उन्होंने हर किरदार को इस तरह निभाया कि लगा जैसे वो उन्हीं के लिए बना हो। उनके अभिनय में एक ठहराव है, एक शिद्दत है।

कैफी आज़मी साहब की बेटी और शुकत आज़मी की लाडली। शबाना आज़मी का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने फिल्म अंकुर से जो शुरुआत की वो आज भी एक नज़ीर है। समानांतर सिनेमा की वो सबसे बड़ी अभिनेत्री बनी।

शबाना आज़मी आज भी उसी ऊर्जा के साथ अभिनय कर रही हैं। वो एक ऐसी पाठशाला है जहां हर नया कलाकार अभिनय के गुण सीखता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वंदना श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज की कलाकार थी अभिनेत्री शबाना आजमी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत रविंद्र संगीत पर आधारित है। रविंद्र संगीत वाकई बहुत मधुर और सुकून देने वाली शैली है। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित और संगीतबद्ध गीतों का संग्रह है, जिसमें लगभग 2230 गाने शामिल हैं। इनकी खासियत ये है कि वो शब्द और संगीत दोनों टैगोर ने खुद बनाए हैं, इसीलिए इनमें पूर्ण सामंजस्य होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, बंगाली लोक संगीत और पश्चिमी प्रभाव का अनोखा मिश्रण है।

रविंद्र संगीत में भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। प्रेम, प्रकृति, भक्ति, विरह, आध्यात्मिकता, सब कुछ इतने मधुर ढंग से व्यक्त होता है कि सुनते ही मन शांत हो जाता है। गायकी में मीण, मुरकी जैसे अलंकारों का सहज और सुंदर प्रयोग होता है, जो इसे और भी मधुर बनाता है।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम साहित्य और संगीत के उस संगम के नाम जिसने बंगाल की सीमाओं को लांघकर हिंदी सिनेमा के हृदय में अपनी जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं रविंद्र संगीत की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं केवल कविताएं नहीं बल्कि वो धुनें हैं जो रूह को सुकून देती हैं। सचिन देव बर्मन साहब ने जब ज्योति तोरे डाक शून्य की धुन को तेरे मेरे मिलन की ये रैना में ढाला तो मानो संगीत के दो संसार एक हो गए। ये गीत विरह और मिलन की एक शाश्वत अनुभूति है।

अभी आप सुन रहे थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। फिल्म परिणीता का ये गीत सीधे तौर पर रविंद्र संगीत की शैली को सलाम करता है। सादगी और गहराई, यही तो पहचान है गुरुदेव के धुनों की। राजेश रोशन ने तुमार होलो जावा को जब किशोरदा की आवाज में छूकर मेरे मन को बनाया, तो ये साबित हो गया कि टैगोर की धुनें हर दौर के युवाओं के दिलों को छूती हैं।

श्रोताओं, रविंद्र संगीत न तो शुद्ध शास्त्रीय संगीत है, न ही पूरी तरह लोक, बल्कि एक स्वतंत्र अनोखी विधा है जिसे रविंद्र संगीत नाम से जाना जाता है। बंगाल में तो ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और आज भी लाखों लोग इसे बहुत प्यार करते हैं।

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत में आप रविंद्र संगीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन

0: अंकन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Suvendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the Chief Minister. The Governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shapat koritechi je, bidhi dara sthapito, Bharater Sangbidhaner proti, Ami okritrim nishtha o anugotto poshon koribo. Ami ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochisho Boishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shanti Niketan, Vishwabharati University and throughout the West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochisho Boishak. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamila Vetri Kadagam. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannargudi, to make AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy as the Chief Minister. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff, CDS. Ministry of Defence said Lieutenant General Subramani will also serve as the Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan

0: as the next chief of the naval staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the flag officer commanding in chief of the Western Naval Command. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on the 31st of this month. The two-day Indian Ocean Dialogue IOD-10 with the theme of the Indian Ocean region in a transforming world concluded yesterday in New Delhi. In a statement, the Ministry of External Affairs said the dialogue brought together senior officials, policymakers, scholars and experts from Indian Ocean Rim Association member states and dialogue partners to deliberate on key regional developments and emerging challenges in the Indian Ocean region. The Ministry of External Affairs organized the dialogue in collaboration with the Indian Council of World Affairs and the Indian Ocean Rim Association Secretariat. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. Ministry of Finance said that these schemes were envisioned to extend affordable financial protection to all, particularly the underserved and vulnerable sections of society. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts raced to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi last night. Today, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संस्कृति भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप नजीर अहमद खां का सारंगी वादन सुनेंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। बहने पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर संगीता राय के गाए लोकगीत सुनेंगी और नीरजा निषाद की वार्ता सुनेंगी, जलवायु परिवर्तन का सामान्य जनमानस पे असर। दिन में 2:30 पर पहले सुनिएगा बचाऊलाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत, उसके बाद रीता यादव के गाए लोकगीत आप सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत में शैलेश कुमार शर्मा के गाए लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे जगत बहादुर यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में राजेश मिश्र की वार्ता प्रसारित की जाएगी, रविन्द्रनाथ टैगोर और उनका भारत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी मीनाक्षी दास। हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए नजीर अहमद खां का सारंगी वादन। प्रस्तुत है सारंगी पर राग मधुवंती। कलाकार हैं नजीर अहमद खां। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री लालजी श्रीवास्तव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप नजीर अहमद खां से सारंगी पर राग मधुवंती सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री लालजी श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश, पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: इलाहाबाद से अहमद हुसैन।
0: अहमद हुसैन जी, नीम जराए से हमें कॉल कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अरे वो महबूबा फिल्म का मेरे नैना सावन भादो,
0: फिर भी मेरा मन प्यासा। किसी का नाम तो नहीं लेना आपने?
1: अरे पप्पू हैं, कलीम मुस्तफा ले हमारे लड़के हैं
0: जी,
1: जो फूलपुर रहते हैं वहाँ पे, इन्हीं का नाम है।
0: अच्छा,
1: तो आप हमारी है, यहाँ रहती है फूलपुर में, एक रहती वहाँ पे नीचरा में।
0: तो आपको सुनवाएं आपकी पसंद महबूबा फिल्म का गाना?
1: जी जी,
0: लीजिए सुनिए। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम मैं प्रदीप नायर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा प्रदीप जी बोल रहे हैं नैनी से। तो प्रदीप जी कैसे हैं आप? जी प्रदीप जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम बाजीगर फिल्म का गाना है जी। गाना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता।
0: जरूर सुनवाएंगे। आप अपने मित्रों के नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ जी, हमारे मित्रों के नाम है नीरू भाई, अनिल भाई, विशाल भाई और रवि भाई, प्रहलाद भाई, पवन पंदेव भाई और पवनदीप भाई।
0: तो आपको सुनवाने जाए? हाँ जी बोलिए बोलिए।
1: हमारे सब स्टाफ हैं।
0: अच्छा
1: करते हैं, आप लगाते हैं इसलिए हम लोग सुन पाते हैं।
0: चलिए अब आप फोन करते रहिए, हम आपको आपकी पसंद के गाने सुनवाते रहेंगे प्रदीप जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का बाजीगर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मौसम वर्मा, गांव का नाम विंध्याचल।
0: विंध्याचल से मौसम जी हमारे साथ हैं, तो मौसम जी ने कौन सा गीत चुना है? फरेब
1: खरीफ फिल्म का मैम।
0: फिल्म का कौन सा
1: हाँ, तेरी
0: गाने के बोल बताएंगी?
1: आंखें चुकी चुकी, तेरा चेहरा खिला खिला।
0: तो आपकी पसंद के इस गाने को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आपको अपने मित्रों के या अपने दोस्तों के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: दीदी का नाम है परमीला या जीजा का नाम है मनोज ड्राइवर।
0: तो आपको सुनवाते हैं फरेब फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जी राजेंद्र जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है गबन
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, एहसान ने मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: जी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है।
1: जी मैम, जी जी
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: गुलाब प्रजापति कनौजा कला बाबूगंज प्रयागराज।
0: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गुप्त मूवी और गाने के बोल हैं मेरे सनम मुझको तेरी कसम।
0: बॉबी देओल और काजोल की फिल्म थी ये।
1: यस मैम।
0: चलिए तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव ग्राम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सनम रे फिल्म का गाना, इसे आपको सुना दे, अरिजीत सिंह ने गाया है।
0: जी जी सुना दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश

मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट, मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को खत्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाजाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर ए के शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: महकमा मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम पनघट।

0: जया, अरे ओ जया, बहनी हमका राम राम।
1: राम राम गंगा बहिनी और पनघट सुने बेटी सब बहिनी लोगन के जया और
0: गंगा के राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और बताओ बहनी, का हाल चाल बा?
1: तू देखा गंगा, सब अच्छा है। तू बतावा, तुहार का हाल चाल है?
0: हमार भी हाल चाल देखा बहनी, ठीक है। बा ये बतावा कि आज तू अपने पनघटे पे कौन बातचीत लेके आए हो?
1: अरे अरे अरे गंगा, जरा थाम ला, जरा सांस तो ले दा। गुइया बताई थी पर देखा पनघटे पे आवत आवत जल्दी से चले आवा, तो थोड़ा सांस ले दे। पर देखा सांस ले ले तो का बताइन दे कि बात का है, आज का बातचीत हुई। तो देखा आज जो उन्हें बहुत ही सुंदर दिन है, और देखा एके भावनात्मक जो उन्हें आज एके भावनात्मक भी महत्व है, और देखा आज जो उन्हें एक महान कवि, साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। और एक ई बात और गंगा,
0: बतावत बतावत रुक गया हो।
1: हाँ, ये चीज हम चाहती थी कि तू बतावा।
0: अरे जया बहनी, देखा हमहू एक माँ है ना, तो माई होए के नाते तो हम इतना तो जनबे करी थी कि कल मातृ दिवस है ना,
1: हाँ
0: तो हम सब
1: बिल्कुल।
0: सोचे कि आज हम सब ओहू पे बातचीत कर लिया जाए।
1: काहे ना, तो देखा आज हम चला बत कही कर लिया जाए।
0: बिल्कुल, चला तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जयंती आ जाए, है ना। तो देखा वो एक ऐसा साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षाविद रहन, जे भारतीय संस्कृति के विश्व पटल पे नई पहचान दिलायन।
1: देखा गंगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो रहे ना, बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी रहे। बहुत कम उम्र में ही कविता लिखन शुरू कर दिए रहे हो, और ये प्रतिभा आगे चल के उन्हें विश्व कवि बनाए दिए।
0: और उनके देखा अमर कृति गीतांजलि के बदले उन्हें साहित्य के नोबल पुरस्कार भी मिला। टैगोर जी खाली कवि भर ना रहन, वो

0: शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लायन और शांति निकेतन की स्थापना की।
1: अधिकार टैगोर जी के विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितना कि वो समय रहे। तो मानत रहे कि शिक्षा जो ने खाली किताब तक सीमित नहीं है बल्कि प्रकृति और जीवन के अनुभवन से भी जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल बहनी, देखा, और उनके कविता में प्रकृति, प्रेम, मानवता और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत संगम दिखाई दे रहा। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन उन्हीं के रचना रही है।
1: देखा है कि कितना महत्व है।
0: बिल्कुल, और देखा उनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा रहे। ये पंक्तियन में टैगोर जी ऐसन भारत की कल्पना करत रहन जहाँ ज्ञान, स्वतंत्रता और मानवता के प्रकाश होए।
1: तो देखा आज जो उन्हें दुनिया भर में
0: कितनी तेज, मतलब भाग दौड़, दुनिया भागत वो समझ ले,
1: आज तेज भागत है दुनिया में ना। टैगोर हमका ई सिखाए इनके जीवन में संवेदना और संस्कृति कितना महत्वपूर्ण बा।
0: बिल्कुल बहनी, तो देखा कितना इनके कितना हमें सबके जीवन जिए के सलीका और शिक्षा, मतलब जिंदगी में कैसे आगे बढ़े, तो बहुत कुछ हम सीखे इनसे।
1: बिल्कुल, और देखा गंगा कि ये बात कही तो हुई है, पर देखा आपका सुना एक माँ के बारे में कुछ बात कह लिया जाए।
0: देखा माँ के बारे में तो मतलब जितना कहा जाए उतना कम, बस तुलना ना इन कौन है ना। माँ है तो जग है ना। माँ सिर्फ एक शब्द ना है, एक एहसास ना है,
1: बिल्कुल
0: एक विश्वास है, एक ऐसन छाया है जो उनकी हर धूप में हमारे साथे चलत है। जब हम गिरी थे तो सबसे पहले संभाले वाला हाथ माई के होते है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और जब हम जीती थे कोनो भी चीज में तो भी सबसे ज्यादा खुश होए वाली माई ही होती है ना।
1: सही गंगा। देखा माँ के बदे जितना कहा जाए उतना कम है। माँ वो किताब है जिका शब्दन में जो उन्हें पढ़ा ना ही जाए सकत। हम सब चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ के नज़र में हमेशा बच्चन।
0: बिल्कुल, देखा दुनिया के हम कुछ भी हो, मतलब चाहे जोन भी कर ली दुनिया में, बड़े से बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन माँ के लिए हम पूरी दुनिया हो थे, है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: देखा लड़कियन के छोटी सी तकलीफ अगर हो जाते है तो महतारी पूरी रात
1: जागत
0: है ना। और अपने कोनो भी दर्द हो जाते तो इतने बढ़िया से छुपाए ले जाते इनकी जो ने गदेलन के और परिवार में पता ना चले।
1: बिल्कुल सही। तबे तो देखा गंगा जब माँ जब बच्चा पैदा होता है हाँ, तो सबसे जो ज्यादा खुशी होती एक माँ का होते। और देखा कहा जाते कि जब बच्चा पैदा होते तो देखा रोध में पैदा होता।
0: बिल्कुल, अगर ना रोवे तो दिक्कत होता
1: है। बिल्कुल, और देखा जब वो रोवे कहा जाता है ना कि माँ जो रोब है वो पहली बार होते हैं, उसके बाद हमेशा माँ का हसावा थी। हर तरह से उसका पालत ही बड़ा कर रही थी। और देखिए वो ममता के छाव में एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ भी हो जाते हैं, पर देखा माँ का जो साथ है वो हमेशा हमेशा के लिए उसके मन में एक अपन छाप बना
0: होते हैं। जया बहनी, और एक चीज और देखा कि माँ और बच्चे के जो रिश्ता रहा था ना वो और सबसे 9 महीना ज्यादा रहा था।
1: बिल्कुल सही
0: है ना, जैसे कि वो 9 महीना पहले माँ के कोख में आ जाते हैं, तो वो जो सबसे 9 महीना ज्यादा होकर रिश्ता रहा था। तो देखा बहनी हरन भी जाना थी कि माँ के कर्ज कबू चुकावा ना जा सके।
1: बिल्कुल सही।
0: हम सिर्फ इतना कह सके थे कि उन्हें प्यार दई, सम्मान दई और कबू उनके दिल ना दुखाई। जोने घरे में माँ मतलब हसत मुस्कुरात रहा थी ना, वही घरे में भगवान बसत है।
1: बिल्कुल सही। तो देखा मातृ दिवस हर वर्ष मई के दूसरे रविवार का मनावा जाते है। ये दिन बच्चन अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करते हैं, उन्हें कोई उपहार भी देते हैं। और कई बार तो देखा छोटे छोटे से जो उन्हें नान नान गदीलन जो उन्हें छोटे छोटे से कार्ड भी बनावा था अपनी माँ का दे के लिए। देखा वही सबसे बड़ा प्रेम का उनका उपहार है। कहे से देखा सामान तो देखा हर कोई दे सकते है, पर जब हम एक कागज पर अपने कलम से कुछ अच्छा प्यारा अपनी माँ के लिए लिख दे तो सबसे बड़ा उपहार हो जाता है।
0: वो एकदम मतलब इतना खुश हो जाती कि हमारा बच्चा हमरे लिए ये महसूस करता है।
1: हाँ बिल्कुल। देखा अक्सर ही हम देखी थी कि ओका माँ बड़े संजोए के रखा थी, कबो कबो बिस्तरा के नीचे भी दिखाई देते।
0: देखा हम खुद ही अपने गदेला के कार्ड खूब बढ़िया संजोए के रखे। जब कोनो काम करी थे अगर खोली थे देखी थी कि काव काव लिखे तो एक बार चेहरा पे मुस्कान जरूर आ
1: जाते।
0: तो देखा होते ना कि माँ और बच्चे के रिश्ता ऐसा होते। माँ है तो जग है, यही लिए

0: आगब कि माँ खाली जन्म ना देत, वो जीवन के अर्थ देत है। ओके, ममता त्याग और दुआ से ही घर घर बनत
1: है। देखा एक बात और गंगा, कि देखा माँ के कर्ज तो कभो भी कोनो जो ने बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना धनी हो जाए, वो कभो भी नहीं चुका सकत।
0: बिल्कुल।
1: तो माँ के प्रति देखा हम तो कही थी केवल एक दिन नहीं, हमका तो लगता है वर्ष का प्रत्येक दिन माँ के लिए समर्पित होए का चाहिए। और सुबेरे उठ के हम सब लोगन का अपनी माँ के प्रति प्रेम जाहिर करे का चाहिए, और उनके लिए जो उन भी खास से खास हो सके हम लोगन का करे का चाहिए। कैसे देखा माँ ही ऐसी एक मतलब व्यक्ति होते जो उनकी देखा सुबेरे से शाम तक केवल अगर उनके मन में अगर कोनो चिंता ज्यादा होती तो केवल अपने बच्चे के लिए,
0: बच्चे के लिए होते। बिल्कुल, माँ कितना भी परेशान होते लेकिन वो कई चिंता लगी रहते कि हमारे बच्चे काओ खाए, हमार गदेला काओ खाए, हम वह बनाए दे, चाहे उठे की हिम्मत हो चाहे ना हो।
1: बिल्कुल सही। देखा खुद भी बीमार पड़ी रही है पर मन मा ई चिंता ना रही कि आपन दवाई पहले खा ले। चिंता ई रही कि हमार बच्चा आवे अगर विद्यालय से लौटे या बाहर से आवे तो हम उका का खिलाए दे कि वो जो ने तंदुरुस्त हो जाए और जो ने अच्छा मतलब उका अच्छा लगे। तो देखा बात माँ के ऊपर तो शब्द कम है और एक पूरा दिन कम है,
0: शब्द ज्यादा है समय कम है। कहे से कि देखा पनघटे पे और भी बहुत सारे विषय हैं, तो हाँ। यही नाते माँ पे तो जितना चर्चा किया जाए उतने कम बा।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन अब आगे अपने उसमें पनघटे पे लौटे हाँ। थे हम सब। हाँ, और एक गौने ही सुना जाए, चला संगीता राय बहनी से।
1: हाँ तो चला सुना जाए।

0: गंगा,
1: हाँ विनी,
0: देखा लोकगीत तो सुन ली गागवा,
1: हाँ
0: पर
1: बिल्कुल,
0: देखा अब अपने पनघटे पे एक ठी वार्ता है, जलवायु परिवर्तन का सामान्य जनमानस पे असर, और देखा वार्ताकार है नीरजा निषाद बहिनी, तो चला सुन लिया जाए।
1: चलो सुना जाए।
2: हमारी वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन का सामान्य जनमानस पे असर। धरती पर जीवन के अनुकूल जलवायु के कारण ही यहाँ जीवन संभव है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें लगातार हो रहे परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ाई है। जलवायु परिवर्तन के इस स्वरूप से सामान्य जनमानस पे गहरा और बहुआयामी असर पड़ रहा है, जो अब केवल एक वैज्ञानिक चेतावनी नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसके कारण मौसम के मिजाज में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की आजीविका, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जीवन शैली पर पड़ रहा है। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो मौसम एक निश्चित समय पर आता था, गर्मी, बारिश और सर्दी का एक तय क्रम होता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। कभी अचानक तेज बारिश, कभी दीर्घकालीन सूखा, तो कभी असहनीय गर्मी, यह सब संकेत है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सामान्य जनमानस पे, खासकर गरीब, किसान और मजदूर वर्ग पर। जलवायु परिवर्तन अब एक थ्योरी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। हमें समझना होगा कि मानवता को प्रभावित करने वाले सभी मसलों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मुख्य चिंता का विषय है। आज हमें डर इसी बात का है कि मनुष्य अपने ही क्रियाकलापों से विश्व जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसे समझते हैं। किसी क्षेत्र में कई वर्ष के औसत मौसम को जलवायु कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन को जलवायु की स्थिति में होने वाले ऐसे बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे दशकों या उससे अधिक समय में पता लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि और इसके कारण मौसम पैटर्न में होने वाले दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के 5 घटक हैं, वायुमंडल, जलमंडल, क्रायोस्फीयर, स्थलमंडल और जीवमंडल। जलवायु परिवर्तन का अर्थ इसमें से किसी भी या सभी घटकों में परिवर्तन होना है। चर्चा हम जलवायु परिवर्तन की कर रहे हैं तो इसके कारणों के प्रमुख कारक को हमें समझना होगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में बढ़ रही हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर रोक कर तापमान बढ़ाती हैं। इसी तरह जीवाश्म ईंधन का दहन भी प्रमुख कारणों में से एक है, जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योग के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है।

जिससे तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। उन्हें काटने से न केवल अवशोषण रुकता है, बल्कि पेड़ में जमा कार्बन भी वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस तरह वनों और वृक्षों की कटाई भी एक मुख्य कारक है। कृषि और पशुपालन से भारी मात्रा में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, सीमेंट, स्टील और अन्य उत्पाद के निर्माण के साथ साथ लैंडफिल में सड़ते कचरे और अपशिष्ट से भी हानिकारक गैस निकलती है। वर्तमान में मानवीय कारण ही सबसे ज्यादा हावी है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट और सूर्य की गतिविधि में बदलाव जैसे प्राकृतिक कारण भी बहुत कम हद तक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के इन कारणों से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और भीषण गर्मी जैसी चरम मौसमी घटनाएं आम हो गई हैं, जिसका सामान्य जनमानस पर बहुत गहरा और बहुआयामी असर पड़ रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण लू की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। बदलती जलवायु के कारण मच्छर, जू और मक्खियों के पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का प्रसार तेजी से हो रहा है। वायु प्रदूषण, गर्मी की मिश्रण से सांस संबंधी बीमारियां आदि बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी और खाद्य सुरक्षा पर भी संकट गहराता जा रहा है। बेमौसम बारिश, सूखा और गर्मी के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उत्पादन में कमी आ रही है और किसानों की आय घट रही है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है। सूखा पड़ने और बर्फ के ग्लेशियर पिघलने से ताजे पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, जिससे खेती और दैनिक उपयोग के लिए पानी की कमी हो रही है। आजीविका, अर्थव्यवस्था भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अछूता नहीं है। जब खेती प्रभावित होती है तो उससे जुड़े अन्य रोजगार भी प्रभावित होते हैं। खेतों में काम कम हो जाता है, मजदूरी के अवसर घटते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता और काम के घंटे कम हो गए हैं। बाढ़, चक्रवात और तूफानों के कारण घरों, फसलों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पलायन और जीवन शैली में बदलाव का भी कारक बनता जा रहा है। सूखाग्रस्त या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लोग सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। गर्मी से बचने के लिए कूलर और एसी का उपयोग बढ़ गया है, जिससे बिजली की खपत और खर्च बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर गरीब, बुजुर्गों, बच्चों और ग्रामीण आबादी पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास इस बदलाव से निपटने के संसाधन सीमित हैं। शहरी और तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शहरों में कंक्रीट के जंगलों के कारण जल निकासी रुक जाती है, जिससे हल्की बारिश में भी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली और चेन्नई की बाढ़। इस तरह समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा पैदा हो गया है, जिससे तटीय कटाव और खारे पानी की समस्या बढ़ रही है। फसलों के बर्बाद होने का डर, पानी की कमी की समस्या और गर्मी से बेचैनी ग्रामीण और शहरी आबादी में मानसिक स्वास्थ्य पर संकट पैदा कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, तूफान, जंगल की आग जैसी घटनाओं में वृद्धि से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का हम सामान्य जनमानस पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका कुछ वर्तमान उदाहरण हमारे शहर प्रयागराज से। प्रयागराज में तापमान उच्चतम स्तर तक पहुंचने लगा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और लू की स्थिति बन रही है। गंगा यमुना के जल स्तर में काफी बदलाव आया है। पिछले 2 दशकों में इन नदियों के औसत जल प्रवाह में 10 से 15% की गिरावट देखी गई, जबकि पानी का तापमान काफी बढ़ गया है। अनियमित बारिश और तापमान में वृद्धि के कारण कृषि

उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों ने फसलों की उपज में 25% तक की गिरावट दर्ज की है। 17 वर्षों के विश्लेषण के अनुसार प्रयागराज में जलवायु परिवर्तन की गंभीरता बहुत अधिक श्रेणी में है। जलवायु स्कोर पिछले 16 वर्षों की तुलना में 32.09% की गिरावट आई है। नदियों के पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण मत्स्य पालन में गिरावट आया। मछली की आबादी में 20% की कमी आई है। नदी के जल स्तर में कमी के कारण पानी में प्रदूषकों की सांद्रता में 30% की वृद्धि हुई, जो पानी की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाती है। एक ही वर्ष में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जो जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत है। इन बदलावों का मुख्य कारण शहरीकरण, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि निवासियों के स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य जनमानस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बहुत ही जल्दी जल्दी और घातक बदलाव होने लगे हैं। साल 2019 दूसरा सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। अब तक का सबसे गर्म दशक 2010 से 2019 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का स्तर 2019 में नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। बाढ़, सूखा, झुलसा देने वाली लू, जंगल की आग और क्षेत्रीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे मनुष्य के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए अभी भी समय है। ये समाधान किसी एक व्यक्ति या एक कदम से नहीं बल्कि कई स्तरों पर मिलकर किए गए प्रयासों से संभव है। इसमें व्यक्ति और समाज के साथ स्वयं को भी भूमिका निभानी होगी और हम सबको मिलकर छोटे छोटे ही सही प्रयासों को अपनाकर शुरुआत करनी होगी। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, कोयला, तेल के जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग बढ़ाएं, ऊर्जा संरक्षण करें, बिजली की खपत कम करें, LED बल्बों का उपयोग करें, वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, साइकिल चलाएं और सार्वजनिक परिवहन का सर्वाधिक उपयोग करें। कचरा पुनर्चक्रण के सिद्धांत को अपनाएं और प्लास्टिक का कम उपयोग करें। खाद्य आदतों में बदलाव लाएं, मांस और डेयरी उत्पादों का सेवन कम करें, क्योंकि पशुपालन ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख स्रोत है। जल संरक्षण करें, पानी की बर्बादी रोकें और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें। सतत खेती अपनाएं, रासायनिक खादों का कम उपयोग करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। जलवायु परिवर्तन के समाधान में के संदर्भ में स्वरचित कविता की पंक्तियों का उद्धरण करती हूँ। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प उठाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, न काटे वृक्ष न काटने दें, एक वृक्ष हर जन रोपित करे। चलो ये संकल्प उठाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, जलवायु परिवर्तन कम कर दिखलाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं। कलकल बहती निर्मल नदियाँ, दूषित हुआ जिनका जल, चलो इन्हें निर्मल बनाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं। दूषित जल, कूड़ा, कचरा इनमें अब नहीं बहाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, जलवायु परिवर्तन कम कर दिखलाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम कर दिखलाते हैं, सप्ताह में एक दिन अपना वाहन नहीं चलाते हैं, इन छोटे छोटे प्रयासों को चलो अपनाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, जलवायु

0: परिवर्तन कम कर दिखलाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं। छोटे छोटे प्रयासों को अपनाकर चलो इस धरा को फिर से धानी चुनर पहनाते हैं, हरियाली लहराते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, जलवायु परिवर्तन कम कर दिखलाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं। सुरक्षित पर्यावरण से हमें संरक्षित वातावरण मिलेगा और संरक्षित वातावरण से जलवायु परिवर्तन पर हम धीरे धीरे ही सही नियंत्रण की प्रयास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कविता हमें इसी तथ्य को समझा रही है। अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए यही कहना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग हम सबके अस्तित्व की जंग है। हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है और भविष्य के लिए इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यदि हम अभी से जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अंततः जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की सच्चाई है। इसका समाधान हमारे छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर हर व्यक्ति अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाए तो बड़ा असर पड़ सकता है और सकारात्मक परिणाम आ सकता है। बस जरूरत है शुरुआत और अपने आदतों में सुधार की।
1: गंगा,
0: हाँ बहनी।
1: देखा कितना अच्छा नीरजा निषाद बहनी बताई कि देखा जलवायु परिवर्तन के जो जनमानस पे असर है ना, देखा
0: हर तरीके से
1: हाँ
0: समझाएं।
1: सर हर तरीके से समझाएं, पर देखा अब जो उन्हें एक जो उन्हें फिर से गीत के समय हुई चलाए।
0: बिल्कुल गौ नहीं, एक तो जरूरी है भाई। देखा
1: हाँ
0: मनोरंजन के साथ, जानकारी के साथ साथ मनोरंजन तो बहुत है जरूरी है।
1: हाँ तो
0: तो चला
1: चलो।
0: सुना जाए संगीता रॉय बनी से एक तो पूर्वी।
1: बिल्कुल।

0: जय वनी, देखा गाँव नहीं कितनी बढ़िया रही है ना।
1: हाँ देखा।
0: अब हमें सोचा थे देखा कि मनोरंजन होएगी, जानकारी होएगी, अब तो स्वाद की बात हो के चाहिए कुछ।
1: हाँ तो देखा आज हम खट्टा मीठा स्वाद लेके आई है।
0: हाँ देखा मुँह में पानी आ गया। तो काव तू ले आयो तनी बहनी हरन से भी बतावा हमरे।
1: देखा आज हम लेके आए हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार।
0: अच्छा
1: अच्छा कि ये हमका आलू के पराठा के साथ बहुत पसंद है। तो देखा आज हम अपने घरे में बनावा है।
0: हाँ।
1: तो आज तोहू का बताई कि देखा नींबू का खट्टा मीठा अचार कैसे बनी।
0: हाँ।
1: देखा नींबू ले लो लगभग 1 किलो। ओमा चीनी चाहिए 250 ग्राम, 2 बड़े चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा सा काला नमक।
0: अच्छा
1: और देखा एक का बनाओ बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जब हम नींबू ले थी तो ओका धोए लो, और धोए के जो ने ओका कोनो छन्नी में सुखाए लो ताकि पानी सारा झड़ जाए, और थोड़ी देर के लिए ओका उमा पानी ना रहे।
0: हाँ।
1: मतलब यानी कि या तो पंखा के नीचे ओका खड़ा खड़ा ही एकदम पोछ के या तो इस्तेमाल करे या तो फिर ओका सुखाए ले।
0: सुखा ले तनकी देर घामे में रख दे अपने।
1: हाँ,
0: सूख जाए
1: बिल्कुल। तो बस जब वो सुखाए जाए तो ओका 4 हिस्सा में काटे। काटे के बाद जो उन्हें उमा नमक हल्दी लाल मिर्च और चीनी मिलाए दे। अब मिलाए कि खूब अच्छे से ओका हाथ से सब जगह उमा ये जो नमक है हल्दी है मिर्च है
0: मिल जाए,
1: मिल जाए चीनी। अब बस एक जार में ओका भर के धूप में रख दे। और फिर ओके बाद जो बाकी का मसाला है जब 1 दिन तो धूप में रखाया जाए, जो बाकी का मसाला है वह डाल के ओका जो ने फिर से धूप में रख दे।
0: अच्छा।
1: जब ये धूप देखा नींबू का अचार ना पूरा पूरा धूप से ही बना थे, यानी कि जो ओके जो छिलका कड़ा होता है वो जो ने मुलायम हो जाते हैं तो खाए में अच्छा लगते है। कुछ लोग मोटे छिलके वाले नींबू का भी अचार बनावती ओहू स्वादिष्ट होता।
0: देखा इतना बढ़िया हमारे मुंह में पानी आएगा एकदम खट्टा खट्टा।
1: और का अरे बहुत
0: इतना बढ़िया अचार बताओ हम घरे जाब तो जरूर बनाए। ओकरे साथे साथे तो का बढ़िया से खट्टा मीठा गीत सुनाए दी। चला तीसरी कसम फिल्म से आशा भोसले जी की आवाज में चला सुना जाए।
1: चला सुना जाए।

0: गंगा।
1: हाँ बहनी,
0: देखा कितना अच्छा गीत रहा, तू तो झूमत रहो।
1: गीत गाने ही सुन के तो मन झूमबे कर रहे थे बहनी।
0: हाँ, देखा जब अब झूम भी लिया गवा, खाए भी लिया गवा, तो अब कसना ईमेल संदेश सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, चलो सुना जाए।
2: जहाँ बातन में हो था अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
0: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
0: गंगा।
1: हाँ बनी।
0: देखा संदेश भी सुन लिया गवा।
1: तो देखा पनघटे पे आए के बाद जाए के तो ना है मन खात, लेकिन चले के तो पड़ी है ना, कहे से कि देखा अब समय होएगी वो घरे चले के और बहनी हरन से विदा लेके। तो बहनी हरन से राम राम किया जाए। राम राम बहनी हरन,
0: राम राम बहनी हरन।

अभी बहनें पनघट कार्यक्रम सुन रही थीं। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा अब समाचार विस्तार से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष अग्निमित्रा पॉल अशोक कीर्तनिया खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है इस अवसर पर शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की एक रिपोर्ट

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन

0: चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवी के

0: को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001424।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए बचौलाल यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं जगत बहादुर यादव और साथी। पहले सुनते हैं इनसे झूमर।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना जगत बहादुर यादव और साथियों से झूमर, और आइए अब सुनते हैं निर्गुण।

जगत बहादुर यादव और साथियों के गाए इस विकास गीत के साथ ही कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

रफ्तार की इस दौड़ में जरा ठहरना सीखिए, जिंदगी अनमोल है, इसे संभल कर जीना सीखिए। और इसी ठहराव का रिमाइंडर लेके आते हैं हम हर शाम को आपके लिए, आपको ये याद दिलाने कि रुकना भी कितना ज़रूरी है। हेलो हेलो हेलो एंड वेलकम टू अनदर बैंगर एपिसोड।

कोड ऑफ युवाणी मेरे यानी उन्नति के साथ, जहां हम आपके इंतजार की घड़ी पर लगाते हैं विराम और लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी, कुछ खुद से जुड़ी अनगिनत बातों का सिलसिला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रोज यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ खास, कुछ नया लेकर के आएं। और आज तो फिर भी सैटरडे है, वीकेंड का दिन है, फिर कल संडे हो जाएगा, तो मतलब यू समझो कि फुल ऑन चिल एंड रिलैक्स मोड। ऐसे में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के प्रति, आपके प्रति, वो और भी बढ़ जाती है। मगर हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इस पर खरे उतरे। इसीलिए आज भी हम आपके लिए वीकेंड स्पेशल लेकर के आए हैं, जो है आज की शाम आपके नाम। तो हम अपने सेगमेंट के पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाएं और उनको रिवील करें, उससे पहले आपके लिए एक हिंट है जो उनसे रिलेटेड है। मुझे बताइए, वो ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिनकी मासूमियत और सादगी ने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया है, जिन्होंने विलेन की दुनिया में भी प्यार का रंग दिखाया, और जिनके पिता बॉलीवुड में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। चलिए, एक के बदले मैंने आपको दो हिंट्स दे दिए। अब जिस ठहराव की हमने पहले बात की थी ना, उसी ठहराव के साथ सोचिए कि आज हम किस खास एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आज की चर्चा पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि हम में से कितने लोग रोज़ सड़क पर चलते हैं, पैदल, बाइक से, साइकिल से या कार से। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये कैसा सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी चर्चा है वो हमसे बहुत सीधे, बहुत पर्सनल तरीके से जुड़ी हुई है। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी यूएन वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक, यानी सड़क पर हमारी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी और समझदारी की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सड़क पर जो हमारा सबसे बड़ा टूल होता है ना, वो होता है हमारी सोच। यूनाइटेड नेशंस हर साल इस खास सप्ताह को मनाता है, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना ताकि हम सब मिलकर सड़क को सुरक्षित बना सके। मगर ऐसा नहीं है कि ये सप्ताह जो है सिर्फ एक इवेंट है, ये एक मिशन है लोगों को जागरूक करने का, सुरक्षित आदतें अपनाने का और एक ऐसी संस्कृति बनाने का जहाँ हर कोई जिम्मेदार हो। हर साल इसका एक खास थीम होता है, जैसे स्पीड कम करना, सीट बेल्ट पहनना, पैदल यात्रियों की सुरक्षा या साइकिल लेन को बढ़ावा देना। तो जब आप सड़क पर निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर एकदम केयर फ्री होकर के चलना है। जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पे हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है और हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी होती है। तो जब आप सुरक्षित चलते हैं तो सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों को भी सुरक्षित रखते हैं। अब बात ये आती है कि आप अपना योगदान इसमें कैसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लॉन्च करने हैं। आप अपनी छोटी छोटी आदतों से ही बड़ा असर लेके आ सकते हैं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप हेलमेट का और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और जब आप ड्राइव कर रहे हो या सड़क पर ऐसे चल भी रहे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपने स्पीड पर कंट्रोल रखें और पैदल चलने वालों का सम्मान ज़रूर करें। अब ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, इसकी शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। सबसे पहले आप खुद ही जागरूक बनिए, उसके बाद अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को जागरूक करिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको उसका रियलाइजेशन करवाइए। और वैसे भी हम तो युवा हैं और हम युवा हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो अगर आप ठान लें कि बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे, रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि इसका महत्व क्या है, तो यकीन मानिए कि पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और समझदारी से सही कदम उठाएंगे। अब हम जिम्मेदारी की बात कर ही रहे हैं तो युवाणी में भी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे होते हैं, उनके प्रति भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखें। जहाँ बातचीत के बीच हम आपको देते हैं मेलोडियस ब्रेक्स, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ ही गया होगा कि अब वक्त हो चला है आज के पहले गीत का।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार।

0: बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, जैसा कि हम रोड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने बारे में या सिर्फ इंसानों के बारे में उस सेफ्टी को लेकर के हम बात कर रहे थे। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो सड़क के किनारे रहते हैं, या फिर जो छोटी छोटी पक्षियां होती हैं जो थोड़ी देर के लिए आ करके सड़क के किनारे रुकती हैं, उनके लिए भी ये सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और आज हम सड़क सुरक्षा सप्ताह तो मना ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी। एक ऐसा दिन जो हमें प्रकृति के उन अद्भुत यात्रियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो बिना पासपोर्ट, बिना टिकट हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। और आम तौर पर ये जो दिवस होता है ये मई और अक्टूबर के महीनों में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना, उनके संरक्षण के महत्व को समझाना और प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को और भी मजबूत करना। इस पहल को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिलता है, जिनमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी शामिल है। अब हम प्रवासी पक्षियों की बात कर रहे हैं तो ये होते कौन हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो पक्षी जो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। जैसे ठंड से बचने के लिए गर्म स्थानों की ओर जाना, या भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल जगहों की ओर जाना। आपने शायद सुना होगा साइबेरियन क्रेन्स के बारे में, जो साइबेरिया से भारत तक की लंबी यात्रा तय करते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर की उड़ान बिना GPS, बिना किसी मैप के, सिर्फ प्राकृतिक संकेतों के सहारे। अब आप पूछेंगे कि इनसे हमारा क्या जुड़ाव है, तो जब प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो साथ में बीज और पराग जैसी चीज़ों को अपने साथ लेके जाते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। वो पेड़ों के बीज फैलाते हैं, कीटों को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी अगर ये पक्षी ना हो तो हमारा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो सकता है। अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इनके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप उनके लिए सड़क के किनारे या अपने घरों की छत पे या बालकनी में आप एक छोटे से बर्तन में उनके लिए पानी और दाना रख सकते हैं, जिससे उड़ते उड़ते उनको कभी अगर प्यास लगे तो वो आ करके पी सके। फिर आप जैसे कि जानते हैं कि अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम कितने सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सारे घर जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो आपको कोई भी जगह मिले अपने घर के आसपास, कोई प्लेग्राउंड में, कोई गार्डन में, या सड़क के किनारे भी थोड़ी बहुत भी जगह मिले, तो छोटे बड़े जैसे भी पेड़ आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ताकि उनका वो घर जो है वो बचा रहे। इसके अलावा आप जागरूकता फैला सकते हैं, अपने दोस्तों और अपने परिवारों को अवेयर करिए इस बारे में कि इन पक्षियों का बचे रहना हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रकृति का सम्मान करना। जब भी आप किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं, वहाँ की शांति और स्वच्छता को बनाए रखें, वहाँ के लोगों को भी आप जागरूक करिए कि वहाँ पर वो गंदगी ना फैलाएं और वहाँ की जो स्वच्छता है, वहाँ की जो शांति है वो बनाए रखें। तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्वच्छता बनी हुई है तो सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा होगा। अगर स्वच्छता बनी रहेगी, हमारे आसपास नेचर रहेगा, तो उससे एक पॉजिटिव सोच भी हमारे अंदर डेवलप होगी, एक पॉजिटिव ऑरा जो है हमारे आसपास बना रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। तो दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमें ये सिखाता है कि छोटे छोटे पंख भी बड़ी यात्राएँ तय कर सकते हैं, और अगर ये नन्हे पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर सकते हैं तो हम भी तो छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा बदलाव ला ही सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको ज़रूर अपनाएंगे, दूसरों को भी अवेयर करेंगे इस बारे में, और हम आगे भी अपने शो में और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, जब भी हम आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक या कल्चर की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक छवि बन के आती है, और वो छवि होती है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की, जिनकी बात आज हम करने वाले हैं हमारे आज के प्रेरणा पुंज में। भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति के एक ऐसे महान स्तंभ थे वो, जिनकी प्रतिभा बहुआयामी थी और उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध और सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जबकि माता शारदा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। टैगोर के परिवार का वातावरण साहित्य, संगीत और कला से परिपूर्ण था, जिसने उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की, क्योंकि उन्हें जो ये स्कूली शिक्षा होती है वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित किया। वो बचपन से ही अत्यंत प्रभावशाली थे और मात्र 8 साल की उम्र से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन किया और विश्व साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और गीत सभी विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं की। उनके सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 से सम्मानित किया गया। वो इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियन साहित्यकार बने, और उनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवता, प्रेम और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। टैगोर केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षाविद भी थे। उन्होंने 1901 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन में की। इस संस्थान का उद्देश्य था कि शिक्षा को प्रकृति और मानवता के साथ जोड़ना।

मानना था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये व्यक्ति के समग्र विकास का माध्यम बनना चाहिए। आज भी विश्व भारती विश्वविद्यालय उनके इसी आदर्श पर आगे बढ़ रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी टैगोर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिनमें रवींद्र संगीत को सबसे पॉपुलर माना जाता है। उनके द्वारा रचित गीत जन गण मन हमारे भारत का राष्ट्रगान है, जो देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा उनका एक और गीत है आमार शोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, जो उनकी रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक पहचान दर्शाता है। और फिर टैगोर एक उत्कृष्ट चित्रकार भी थे। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने चित्रकला की ओर और भी ध्यान दिया और उन्होंने सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए। उनकी कला में मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की बात करें तो वो अत्यंत उदार, संवेदनशील और मानवतावादी थे। वो मानवता, प्रेम और विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी मनुष्य को सभी मनुष्य एक समान है और हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव को त्याग कर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ ही 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनकी रचनाएं और उनका जो योगदान है वो आज भी अमर है। वो भारतीय संस्कृति के एक ऐसे दीप स्तंभ थे जिनकी रोशनी आने वाले पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देती रहेंगी और हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। तो ऐसे थे हमारे रवींद्रनाथ टैगोर। अब हम आगे अपने स्पेशल सेगमेंट में बढ़े, उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट आज की शाम आपके नाम का। तो आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आपको एक हिंट दिया था। हमने आपको एक्चुअली दो हिंट्स दिए थे हमने कि आज की हमारी सेलिब्रिटी कौन है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं भी गेस किया है तो हम आगे आपको बताने ही वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये एक एहसास है। ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी हकीकत को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और सपनों में जीते हैं, जहाँ हर गाना हमारे मूड का साथी बन जाता है और हर किरदार कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाता है। बॉलीवुड हमें हंसाता है, रुलाता है, प्यार करना सिखाता है और कभी-कभी खुद से भी मिलवाता है। और इसी जादुई दुनिया के कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो सिर्फ स्टार नहीं बनते, बल्कि हमारे अंदर अपने लगने लगते हैं। अगर आज हम बात करें उसी अपनेपन की, तो एक ऐसी अदाकारा है जो जितनी खूबसूरत स्क्रीन पर दिखती हैं, उतनी ही सच्ची और प्यारी असल जिंदगी में भी लगती हैं। श्रद्धा कपूर, नाम लेते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना? उनकी आंखों में एक मासूमियत है, उनकी हंसी में एक अपनापन है और उनकी अदाकारी में एक सादगी है जो सीधे दिल को छू जाती है। अगर हम उनके शुरुआत की बात करें तो उनके लिए भी ये सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने भी कई स्ट्रगल्स किए, उन्हें भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन असली जादू शुरू हुआ आशिकी 2 से। फिर उसके बाद बागी 3 की बात करें तो यहाँ हम देखते कि श्रद्धा का एक अलग ही रूप है, एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और एनर्जेटिक पर्सनालिटी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस के बीच वो हर फ्रेम में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका आत्मविश्वास और उनका जो चुलबुला अंदाज है, वो सब कुछ मिलकर उन्हें बनाता है श्रद्धा कपूर।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

दोस्तों, कभी-कभी फिल्मों में कोई किरदार ऐसा होता है ना जो कहानी से भी आगे निकल जाता है, जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं रहता बल्कि दिलों में घर बना लेता है। और जब बात हो एक विलेन की तो श्रद्धा कपूर का किरदार आयशा, बस वही एहसास है। श्रद्धा कपूर एक ऐसा नाम है जो सादगी और चार्म का परफेक्ट मेल है, लेकिन एक विलेन में उन्होंने सिर्फ अपनी मासूमियत नहीं दिखाई बल्कि एक ऐसी गहराई दिखाई जो आपको अंदर तक छू जाती है। आयशा, एक लड़की जो हंसती है, गाती है और जिंदगी को हर हाल में जीना जानती है, वो परफेक्ट नहीं है। वो थोड़ा बिंदास है, थोड़ी अजीब है, पर शायद यही वजह है कि वो इतनी रियल लगती है। और हमारी ज़िंदगी की भी यही सच्चाई है कि हमेशा हर वक्त लाइफ परफेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन उन इम्परफेक्शंस में भी हमें लाइफ को जीना आना चाहिए। और अगर श्रद्धा की बात करें तो उनकी असली खूबसूरती सिर्फ उनके किरदारों में नहीं होती बल्कि उस इंसान में है जो वो असल ज़िंदगी में है। वो अपने फैंस से जिस तरह जुड़ी रहती हैं, उनकी जो मुस्कान है, उसमें जो सच्चाई है और उनका जो डाउन टू अर्थ नेचर है, ये सब उन्हें खास बनाता है। मतलब ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट। और यहाँ पर इस फिल्म में श्रद्धा ने ये भी दिखाया है कि सिर्फ मासूमियत ही नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई भी उतनी ही खूबसूरती से निभा सकती है वो। उनकी सादगी, उनकी हंसी और फिर अचानक वो भावुक मोड़ एक ऐसा असर छोड़ जाता है जो सिर्फ फिल्म ख़त्म होने के बाद भी दिलों में रह जाता है।

दोस्तों, चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे हर रोज़ एक सवाल पूछते हैं, तो हमारा आज का सवाल है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस देश से लिए गए हैं? सवाल फिर से सुने, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस देश से लिए गए हैं? आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8004926250 पर। और जिनका सही जवाब होगा, हम उनका नाम शामिल करेंगे कल, यानी कल के युवाणी कार्यक्रम में। तो हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आपके जो फीडबैक्स हैं, जो रिव्यूज़ हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं प्रोग्राम को लेकर के, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। और आप अपना जो सजेशन है, अपने रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, वो आप हमें हमारे नंबर पर भी भेज सकते हैं। मैं नंबर फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 8004926250 पर। तब तक के लिए मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाज़त। आप अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, और उस इकोसिस्टम का भी ख्याल रखें जिसमें कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियाँ ये सारी रहती हैं, क्योंकि उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, फिर एक सुहानी शाम में, फिर नई बातों के पिटारों के साथ और फिर कुछ गानों के साथ। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6 बजने को हैं अब। आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती

0: का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शैलेश कुमार शर्मा से लोकगीत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिए राजेश मिश्र की वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर और उनका भारत। चित्रपट संगीत 8 बजे और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर मनोज कुमार से की गई बातचीत, पशुओं में गला घोंटू की बीमारी। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता होगी गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा सुबह 7:30 पर उस्ताद शमशाद अहमद खां का उप शास्त्रीय गायन और 12:15 पर पंडित रविशंकर उपाध्याय का

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कल्याणी मुखर्जी से गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगे हरविंद्र कुमार यादव वत्सला मनोहर देवधर। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगी बीना रानी श्रीवास्तव राजा राम यादव और सूर्यप्रकाश पटेल। 11:15 पर बालसंग कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे निधि खन्ना की कहानी और 1:15 आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे शीला सोनकर की वार्ता वन हमारे देवता।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर, 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों से लोकगीत, और 7:31 पर आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा प्रोफेसर अली अहमद फातमी और मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता। रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में, और 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है में सुनिएगा प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की लिखी झलकी भंडा फोड़, और 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 6:20 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: कोलकातानगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34+ सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18+ विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+ भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं द्वौ विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23+2000 25+2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यं जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबेगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां, क्रीडां, आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं, विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं, विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र

0: नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी हैदराबादनगरे प्रायः सार्धनवसहस्रकोटितोप्यधिकरूप्यकाणाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिकवीथिकायां राष्ट्रियराजमार्गस्य चतुःभागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदम् उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः अथ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनम् उद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक् पृथक् वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम् राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 जयपुरनगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे, गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचों राम राम। हम कही रानू भैया।
1: हाँ हो भैया।
0: खेती किसानी तो देखा भैया चलत रहा था।
1: हाँ एकदम।
0: और खेती किसानी में भैया ना, जब अगर जानकारी सही रहे
1: हाँ।
0: और सही समय पर अगर सही काम किया जाए
1: हाँ।
0: तब भैया खेती किसानी में मेहनत करे में और मजा आवत है।
1: एकदम सही कहो हो भैया। एक
0: अब
1: बात
0: हाँ, अब जैसे समय बाटे देख, हम सब खाली हो गवा है गेहूं की कटाई भंडारण निराई गुड़ाई सबसे,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: जोन जायद का फसल रही ओहू में हम तो कहा था सिंचाई उचाई हो गई हुई।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब भाई जोन समय बाटे भैया
1: हाँ भैया
0: देख, अब तैयारी करे के समय बा कि जोन मानसून आवे वाला बा,
1: हाँ हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: तैयारी ओकर सोच ओकर समझ अगर अभी से कही के चली ही
1: हाँ
0: तब
1: हाँ हाँ
0: भाई वो जोन बारिश होई लागे उमन किसान भाई के फायदा मिले।
1: एकदम।

0: सही कह भैया, ऐसा ना है, हमें लगता है तू जल संरक्षण पे बात करे जा
1: एकदम
0: रहा है।
1: भैया एकदम, जल संरक्षण में बात कर रहा था ही, और साथ ही साथ देखा जैसे गर्मी पड़त बाटे ही,
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: हर साल ही हम सब देखी था कि भाई पानी का कितना संकट हो जाता, और हम
0: हाँ
1: सब किसान मनाई है ही, अगर पानी न मिले अपने धरती के सिंचाई भरे,
0: हाँ
1: तब
0: हाँ
1: भाई कुल अपन किया कराया मेहनत सब बेकार हो जाता है।
0: एकदम
1: तो
0: सही कह।
1: भैया अगर पानी बचाई के चलब, जल संरक्षण का प्रभावी अगर उपचार करब, ओकर
0: हाँ
1: तरीका अपनौब,
0: हाँ
1: निश्चित तौर पर खेती किसानी सरल होए, और जो आपन

0: तो भैया,
1: हैं।
0: अगर पानी बचाई के चलब, जल संरक्षण का प्रभावी अगर उपचार करब, ओकर
1: हाँ
0: तरीका अपनौब, तो
1: हाँ
0: निश्चित तौर पे खेती किसानी सरल होए और जो अपन प्राकृतिक संसाधन हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: भाई, ऊपर भार कम पड़े।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है, देखे जब जल संरक्षण के बात आवत है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आवत है कि भैया हमें सबके पानी बचे कैसे।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया पानी का उपयोग किसान भैया बहनी हरे सिंचाई में करते हैं। तो सिंचाई में पानी के उपयोग करते हैं तो भाई पानी के उतने प्रयोग किया जाए जितना पानी के जरूरत हो।
0: रानू भैया, ई जोन जल संरक्षण का जब बात होता ना,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो एमन का होता ना कि भाई अलग से आपके कुछ करे के ना ही पड़े।
1: हाँ हाँ
0: इसे
1: हाँ
0: होता ना कि भाई एमन अगर कुछ बचावे के बाटई तो
1: हाँ
0: अलग से पैसा कौड़ी ना ही लगे आपका।
1: एकदम सही कहे
0: भाई
1: भैया।
0: अगर अपने आप व्यवहार में परिवर्तन कर लेही,
1: हाँ हाँ हाँ
0: अपने अगर सूझबूझ थोड़ी सी लई के आई अपने में, तब भाई
1: हाँ
0: निश्चित तौर पर आपके फायदा मिले। अब जैसे
1: एकदम
0: बचावे की बात की है,
1: हाँ
0: तो भाई
1: हाँ
0: खेती किसानी अगर भैया हरे कई रहा हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो जोन सिंचाई तकनीक विशेषज्ञ भैया बतावत हैं,
1: हाँ हाँ
0: जोन
1: हाँ
0: तरीका विशेषज्ञ भैया बतावत हैं,
1: हाँ हाँ
0: अगर उसे सिंचाई की जाए
1: हाँ
0: और जितना जरूरत बा उतना ही सिंचाई करें।
1: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है उसमें
0: हाँ
1: भैया,
0: हाँ रानू भैया।
1: पहले कह रहा कि भैया देखा सिंचाई में कह रहे कि भैया नाली विधि द्वारा सिंचाई किया जाता है। अब कहा है कि भैया उस सिंचाई के व्यवस्था जो है नाली विधि के जरिए कम करके लोग पाइप से करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा नहीं कि भैया जहाँ पे पाइपों ना पहुँच पावता है या हुआ पानी किसान भैया भरत हैं तो बह जाता है, तो हुआ कहा है कि भैया किसान भैया बहनी हरे ड्रिप विधि द्वारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भैया ये है कि सुमरन भैया जब ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करते हैं तो ओकर नियम ये है कि भैया पानी को उतना ही उपयोगिता होत है जितने की जरूरत होता है, ओकरे बाद किसान भैया बहनी हरे अपन बंद कर सकते हैं।
0: रानू भाई, देख जा सिंचाई जोन बाटे ना,
1: हाँ हाँ हाँ
0: अगर सही तरीके से ना किया जाए,
1: हाँ हाँ
0: ऐसे गलती हो जाता कि भाई पानी खुला छोड़ दिए हैं और नाली विधि से भी मान ले करत हैं,
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: पानी खेते में लगाए दिए हैं बहुत जात बाटे, उसे न केवल पानी की के बर्बादी होता
1: हाँ हाँ
0: बल्कि आपके खेत में जोन पोषक तत्व होते हैं भैया,
1: हाँ हाँ
0: काहे
1: हाँ
0: कि जोन पोषक तत्व ज्यादातर ऊपरी सतह पर जब आ जाते हैं, तो
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: ऊपरी सतह से उबह के दूसरे
1: दूसरे
0: खेते में चला
1: खेते
0: जाइ या उबह जाइ,
1: अच्छा
0: तो ई तो आपका माटी का जोन गुणवत्ता बाटे वो
1: हाँ
0: खराब हो।
1: हाँ हाँ
0: दूसर चीज ये बा कि पानी ज्यादा लगे ही, जैसे अब मान लो हम सभी सब्जियन का खेती कर रहा है,
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: सब्जियन के खेती में एक चीज समझे कि चाहिए कि मन ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होता,
1: हाँ हाँ
0: कहे
1: हाँ
0: कि गर्मी इतनी पड़त बाटे कि जोन पानी आप देते वो सूख जाता,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कुछ किसान भाई भूल बस का करते पनिये भर देते।
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: पानी भरे होई की वजह से क्या होता कि जोन उनका तना होता उनमें सड़न आई जाता।
1: हाँ हाँ हाँ
0: आर आपके करई के काबा कि आपके नियमित रूप से सब्जियन में पानी दे के बाटे,
1: हाँ हाँ
0: ई
1: हाँ
0: नहीं कि 3-4 दिना में एक बार गहन कुल कुरई दीहन पानी
1: हाँ
0: भरत बाटे भरी जाए और
1: हाँ
0: जोन लगा सगा रहा आपका सब्जिया वो
1: हाँ
0: खराब हो जाए और पनियों की बर्बादी होए।
1: अच्छा एक बात और है भैया, उमन फल लगा है तो वह पानी में भीग जाता है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वह नुकसान करता है।
0: नुकसान होता भैया।
1: हाँ हाँ
0: देखा जोन जितना चीज के, जैसे अब आप ही हमारे शरीर बाटे या आपका
1: हाँ
0: शरीर बाटे,
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: जितना खाए के हमारी पचन के बाटे
1: हाँ
0: उससे ज्यादा अगर हम सब खाई लेब
1: तो
0: तो या
1: नुकसान
0: तो उल्टी हो जाए या तो पेट खराब हो जाए,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वही चीजिया तो पेड़ के साथ बाटे भाई,
1: हाँ
0: जितना उनके जरूरत बा उतना खाद पानी अगर उनके ना मिले तो भैया वो आपके फायदा के बजाय नुकसान ही दे।
1: अच्छा एक बात और रहे हो
0: हाँ
1: भैया,
0: रानू भाई बता वही।
1: देखा जल संरक्षण में एक विधि और होती कि भैया जौन वर्षा का जल होता ओकर संचय बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो होता का कि किसान भैया बहनी हरे कि चाहे कि भाई अपने घरे के बगले जौन गढ़ा हो तालाब हो भैया ओके साफ सफाई करवा दें और जब बरसात का पानी हो तो भैया उमन एकत्रित हो।
0: हाँ देखा, और सबसे सही समय अब ही बाटे,
1: हाँ
0: अभी खाली बाटे तो ये सब काम कर
1: कई
0: लें।
1: ले। अच्छा और एक चीज़ है भैया, देखे अब तक कहा है कि भैया किसान भैया बहनी हरे जेकरे पास व्यवस्था ना है वो का कहते हैं भैया एक ठे गढ़ा खोद के सोख्ता टाइप का बनवा देता और जो बरसात का पानी है जो छती का पानी है पूरा पानी भैया वही में जाता है। और उसे एक फायदा और है भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि जल तो संचय होता है साथ ही साथ जौन पानी के स्तर है जल
0: भूमिगत
1: स्तर
0: जल का,
1: हाँ
0: हाँ
1: वह भैया बढ़ जाता
0: अने
1: है।
0: बहुत सही बात कहें कि भैया देखा अगर आपके पास सुविधा नहीं बाटे,
1: हाँ
0: अब भाई आपके पास नहीं बाटे कि आप बड़का तालाब खुदवाई दे या जल संरक्षण का कुछ काम कर ले, तो कम से
1: हाँ
0: कम एक सोखता बनवाई दे, ये
1: हाँ
0: तो अपने हाथ ही से हो जाए,
1: हाँ हाँ
0: दिना भर अगर मेहनत कर देबे तो
1: हाँ
0: हम तो कहते हैं कि अच्छा खासा सोखता बन जाए और अच्छा खासा आपको जोन पानी की बचत होए
1: हाँ
0: और आपके आसपास देखा अगर ई एक गांव के बात नहीं बाटे
1: हाँ।
0: या एक शहर के बात नहीं बाटे
1: हाँ।
0: पूरी

0: दुनिया के बात बाटे, अगर ये दुनिया के बचावे के बाटे, पर्यावरण के बचावे के बाटे, तो केवल रानू सुमिरन राम अवतार भैया की जिम्मेदारी नहीं बाटे
1: भैया,
0: ये सब का जिम्मेदारी बाटे कि सब जने मन काम करें, सब जने मन ध्यान दें, ये नहीं कि दू जने सोवत हैं दू जने करत हैं, भाई सबके ध्यान देवे के पड़ी। जोन रानू भैया बताए, हमारा अरदास भैया पंच भाई यही बात है कि जितना आप से हो पावे,
1: हाँ,
0: भाई पहला तो अपने आप व्यवहार में सुधार करें कि भाई जितना जरूरत बा पेड़ के उतना ही पानी करें, उतना ही सिंचाई उमन रखें। दूसरा चीज ये बा कि अगर सुविधा बाटे तो भाई गढ़हा सोखता जोन बा ओकर निर्माण करावे, और ना ही कर सकत हैं तो अगल बगल जोन तालाब बावली कुआं बाटे ओकर कम से कम साफ सफाई कर दें,
1: सफाई करा दे भैया, बरसात के पानी उमन एकत्रित हो। अच्छा दूसरा बात यह है कि भैया घरेलू पानी का बचत हो, सुन का है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अपने घरे में का होता है कि महिला हैं भैया जिसे सब्जी धोत हैं या बर्तन धोत हैं, तो वो पानी का जो उन बचत है अगर वो कोनो कंटेनर या कम से निकाल लेते हैं, तो ओके का है कि जैसे घरे में भैया बागवानी लगाए हैं कुछ लोग, तो भैया वो पानी का उपयोग जो न है बागवानी में भी किया जाए सके।
0: अच्छा एक जोन रानू भाई आप कहें ना ये घरेलू जोन बताएं ना आप,
1: हाँ हाँ।
0: एक हमके चीज और बुरी लगत है,
1: हाँ हाँ।
0: हम देखी था ना जैसे पानी की जरूरत नहीं बाटे, सिंचाई हो गई बाटे,
1: हाँ हाँ।
0: अब चार छठे लड़का आए कहें हाँ। पंप चालू कई दिन नहाब
1: नहाए,
0: चार घंटा नहात है नुमन,
1: हाँ,
0: हम पानी सारा बहा जात बाटे ना ओकर कोनो मतलब बा, कुछ कहो उनसे कि भैया ये पानी काहे व्यर्थ करत है, कहत पानी तो फ्री बाटे,
1: हाँ, हाँ,
0: भैया
1: हाँ।
0: अरे पानी फ्री नहीं बाटे,
1: हाँ।
0: पानी ये आपके ओकर मूल्य नहीं समझ में आवा था, पानी नहीं जय फ्री बाटे
1: ना, ना,
0: पानी का बहुत मूल्य बा, पानी अगर बचाई ही तो आगे आवे वाले जो ना आपका जो भाई पीढ़ी बाटे वो अच्छे तरीके से रहे, उन्हों के जल संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध रही।
1: अच्छा एक बात और है भैया,
0: हाँ भैया बताओ।
1: देखा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सबके पानी के यह समय बचत का और ज़रूरी है भैया, सारे घरन में भैया एक आरओ का प्लांट लगा दिया गया हूँ, तो उम्मन ये होता है कि भैया जौन पानी निकलत है भाई फिल्टर हुए के बाद एक तिहाई पानी तो खराब होता है, वो भैया नाली के जरिए बह के जाते हैं, तो भैया किसान भैया बहनी हरे अगर अपने खिया लगाए हैं तो वो पानी भैया कोनो बाल्टी में एकत्रित कर लेते हैं, तो उसे बर्तन धोए के काम आ सकत है या और भी कर्म से कपड़ा धोए के काम में ऊपर उपयोग कर सकत हैं, तो ऐसे भैया जो है कि पानी का बचत बहुत बढ़िया हो सकत है।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज़ ये है कि किसान भैया बहनी हरन का हमेशा ही चाहें कि सिंचाई के साथ साथ जो अपन सबका चर्चा परिचर्चा भइल है कि भैया पानी के बचत कैसे कैसे करें। दूसरा चीज़ यह है कि भैया कभी कभी देखा तो ये कुछ लोग दाढ़ी बनवाते हैं घरेलू कार्य में, तो के का है दाढ़ी बनवाता है नल अपन चालू कही है,
0: हाँ ये तो वही बात बाटे ना, व्यवहार में कुछ अंतर लावे के,
1: व्यवहार में परिवर्तन से आदमी अपने उपयोग का 25-30% पानी भैया बचाई सकता।
0: एकदम एकदम कही गया,
1: तो हम तो किसान भैया बहनी हरन से यह कहब कि भैया पानी पे विशेष ध्यान दें, उसके बचावे और जल संरक्षण करें भैया।
0: हम कही रानू भैया,
1: हाँ हाँ
0: हम सब बात बात कही तो बड़ी देर से करत है तमाम तरह के बात बहन,
1: हाँ हाँ।
0: और जो हमारे पंच भैया आवा हैं कि भाई रानू और सुमिरन आवा हैं कुछ न कुछ गीत गवनाई लेके आवा हूँ,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: राह ताकत रह
1: हाँ।
0: तो भैया हाँ। का सुनवावत है आज बताई
1: तो भैया, आज लोकगीत में उमेश चंद कनौजिया भैया के एक विकास गीत है,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: देशवा में नाचे।
0: अच्छा अच्छा
1: तो हम सोचते भी किसान भैया बहनी
0: अरे एकदम भैया एकदम एकदम सुनवावा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ रानू भाई, देखा जो विकास गीत रहा कन्नौजिया का, वो सुना गवा। साथ साथ संदेशों सुना गवा। रानू भाई, जो अपन पचन के बात होत रही कि भाई खेती किसानी में अभी जो सब्जी लगी बाटे, भाई ओकर देखभाल कैसे किया जाए,
2: एकदम
1: भाई पानी के बात तो भाई कि भाई सिंचाई ओकर समय समय पे की जाए अगर, तो भाई सब्जी का अच्छा विकास हो, सब्जी का अच्छा फलत मिले हमें पचन के। दूसर चीज ये बन रानू भाई की पानी के साथ साथ खाद और जोन उन पोषक तत्व होते हैं। भाई कहे कि सब्जी का जोन समय होता भाई आप 40-50 दिन में एकर फलत मिलत लागत था। तो भाई अगर अच्छा पोषक तत्व एका ना मिली तो सही तरीके से भाई फल ना मिले मन, और भाई जोन आपके फायदा मिले के चाहिए वो फायदा ना मिले।
2: एकदम सही कहे सुमरन भैया। देखे सबसे बड़ी बात ये

0: की जोन सब्जी यह हरी सब्जी है, और हरी सब्जी के भी देखभाल बहुत जरूरी होता है, और अगर देखभाल ना करत हैं तो किसान भैया बहनी हैं के सबसे ज़्यादा नुकसान भैया ये बात को होते हैं कि कर्म से पैदावार जो है उनकर वो खराब हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि भैया जोन समय से किसान भैया बहनी हरे दो पैसा का आमदनी करते हैं वो खराब होता है।
1: रानु भाई जो बात कहना ये बहुत जरूरी बात बाटे।
0: हाँ।
1: सब्जी खेती में ई बात का ध्यान रखे के पड़ी कि कब ओकर तोड़ाई करे के बाटे।
0: हाँ।
1: कहे कि गर्मी जो हिसाब से पड़त बाटे ना, अगर एक दिना देर सवेर हो जात है
0: हाँ।
1: तो जोन ओकर दाम मिले के चाहे
0: हाँ।
1: उ ना मिले भाई, रचो के अगर ओमन ज्यादा आँच लगी तो भाई सब्जी के जोन भाई नरमी बाटे उ चली जाए और ओकर कड़ी हो जाए तो ओकर दाम ना मिले। तो भैया जब जाए संझा सवेरे तो सिंचाई का ध्यान तो रखबा ही करें, साथ ही साथ यह देखत चले कि कौन भाई कौने क्यारिक तोड़े के बाटे कौने क्यारिक नहीं तोड़े के बाटे।
0: हाँ, हाँ।
1: और अगर सुविधा नहीं बाटे तो अब तो भैया जैसे बहुत व्यवसायिक ढंग से जोन भैया सब्जी लगाए हैं
0: हाँ, हाँ।
1: उनकर तो भैया खेते में आए के जोन आपका हो थिन भाई बाजार से आई के भाई पहले ही मूल्य लगाए लेते और खुद ही तोड़ के लेके जाते। अगर ऐसा सुविधा बाटे तो और अच्छा बाटे, अगर नहीं बाटे तो भाई खुद ही ख्याल लेकर रखें कि कब तोड़े के बाटे कब नहीं तोड़े के बाटे।
0: और एक चीज और है हो,
1: हाँ भैया बताओ।
0: देखिए खेती में सबसे बड़ी चीज यह है कि नम से कि संरक्षित करे के, जैसे किसान भैया बहनी हरी चाहिए खीरा भर ककड़ी भर खरबूजा भर तरबूजा भर जौन भी चीज बोए हैं ओके कर्म से भैया शाम के अपन तोड़ लें, शाम के तोड़े के बाद भैया ओकर व्यवस्थित अपन रख लें खुले में, ओकरे बाद भैया सुबह का करें कि ओके ले जाए के मंडी बेचें। और मंडी भैया जात की एक बात का और ध्यान दें भैया कि ये समय मौसम देखे जेठ तड़कत है, तो भैया किसान भैया बहनी हरन का ये है कि कुछ खाए पी के जाए और पानी हमेशा भैया लेत रहें, और साथ ही साथ भैया एक बात का और ख्याल रखें कि गमछा भाई अगर उनके लगे गमछा है टोपी है हेलमेट है चाहे जैसे जाते हैं तो उनके लगाए रही हैं, तो भैया उनकर भी सुरक्षा बहुत जरूरी है।
1: कुल मिलाए के रानू भैया कह चाहते कि भाई गर्मी में अपनों बचाए के रखें,
0: हाँ
1: ऐसे अपनी सब्जियाँ के बचावत हैं, ऐसे अपन फसल के बचावत हैं, पशु के बचावत हैं।
0: हाँ।
1: जब तक अपन भाई सुरक्षा ना करही तब तक कुल ये सब खराब रहे। भाई अपन सुरक्षा पहले बाटे, आप बचा रही आप सुरक्षित रही आप स्वस्थ रही
0: हाँ।
1: तो भाई खेती किसानी का काम जोन बाटे अच्छा रहे।
0: देखा सुमरन भैया तुलसीदास बाबा कहे है
1: हाँ।
0: कि तुलसी धन धाम शरीरे से,
1: अरे
0: धन और धाम भैया दोनों जोन है
1: हाँ।
0: हमारे शरीरे से है, तो किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि अपने शरीर के साथ साथ भैया लड़कियों का देला
1: एकदम एकदम
0: इस समय कहा है कि लड़कियों का देला के भैया परीक्षा चलता है, तो परीक्षा दई के लड़के का देला आवत है तो भैया कहा है कि अपन कापी किताब कहीं बस्ता रख दिए हैं बाटल कहीं रख दिए हैं तुरंत खेले कूदे चला जाते हैं, तो ये बात के ध्यान भैया किसान भैया बहनी हरन के देवे को कि भैया उनहू भैया सुरक्षित रहें बारी बगीचा न जाएं भैया घरे में रहें खेलें कूदें और भैया खियाई पियाई की भैया आराम से छाए छाए रखें।
1: अरे देखो कितना बढ़िया बात बताया, खेले कूदे की बात बताया है।
0: हाँ।
1: और अपने आज जोन पंचायत घर भाई कार्यक्रम में जोन वार्ता बाटे
0: हाँ हाँ
1: आज
0: हाँ।
1: एक बार देखो वार्ता वही चीज से बाटे कि खेल कूद में जो चोट लग जाता है
0: हाँ हाँ
1: भाई
0: हाँ।
1: उसे कैसे बचा जाए और कहाँ प्राथमिक उपचार किया जाए कहाँ उमन किया जाए
0: हाँ।
1: इसे संबंधित भैया वार्ता बाटे। तो परिवार कल्याण की बात में डॉक्टर के डी त्रिपाठी से अभिनव प्रज्ञा पांडे के बातचीत बाटे और भैया आपको सुने और पंच भाई भी सुने
0: सुनवाई दे।
2: श्रोताओं नमस्कार, हम आज जो बात करेंगे वो है खेलों में लगने वाली चोटों की, क्योंकि कोई अगर खेलेगा तो जाहिर सी बात है शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ेंगे, चोटें भी लग सकती हैं, तो खेलों में लगने वाली चोटों से कैसे बचा जाए और अगर ऐसा हो जाए चोटें लग भी जाएं तो उसका कैसा त्वरित निदान हो सके, खासकर हमारे ग्रामीण अंचलों में जो बहुत अधिक सुविधाएं जिनके पास नहीं होती हैं युवाओं के पास या जो खिलाड़ी हैं उनके पास, तो उसका त्वरित निदान कैसे कर सकते हैं, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रयागराज के प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर के डी त्रिपाठी। डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, जैसा कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि खेलकूद पेरेंट्स के लिए बहुत एक जमाने में अच्छा नहीं हुआ करता था, एक कहावत थी हम लोगों के लिए खेलोगे कूदोगे होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये एक कहावत हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
2: आम जो चोटें होती हैं और जो खेलों के दौरान लगने वाली चोटें होती हैं उनमें मूलभूत अंतर क्या होता है, क्या कोई अंतर होता है?
3: आम चोटें हैं, जैसा आपने देखा होगा कि आम चोटों में ज्यादातर हड्डियों में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन खेलकूद की जो चोटें होती हैं उसमें जो

0: रूट होती है वो मसल्स में, लिगामेंट्स में, ज्वाइंट कैप्सूल में होती है, जो कि दिखती नहीं है। बाकी किसी फ्रैक्चर हो गया तो वो तो एकदम सामने दिख रहा है, हाथ टेढ़ा हो गया, टूट गया, दिखाई पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स की इंजरीज वो दिखती ही नहीं है। सामान्य आदमी को, सामान्य को लगता है कि हल्की चोट होगी और लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं और फिर आगे चल के वो ठीक है, सामान्य आदमी उससे काम कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए तो वो कैरियर है, उसके लिए तो वही उसका प्रोफेशन है। इसलिए उन चोटों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दिख नहीं रही हैं, लेकिन अंदर जाएं तो उसमें बहुत ही गहन समस्याएं होती हैं।
1: अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो जिनके पास साधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो वो जो एक तरह से आहार सप्लीमेंट होता है, जो पूरक आहार होता है, वो पर्याप्त उसको लेते रहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे गांवों में, कस्बों में काबिलियत तो है, लेकिन उस तरह का वो आहार नहीं ले पा रहा है, पूरक आहार नहीं ले पा रहा है, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है?
0: एक ये बड़ी मिथ है, मैंने देखा है ज्यादातर जब स्पोर्ट्स के बच्चे हमारे पास आते हैं तो कोई एक प्रोटीन का डब्बा लिया हुआ है, किसी ने विटामिन की टेबलेट ली हुई है, किसी ने कुछ ने फूड एनर्जी ली है। ये एक मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी है उसको, उनको उत्पादों को बेचने के लिए। हम जो बताते हैं पेशेंट्स को या जो हमारा कॉमन स्पोर्ट्स पर्सन है, आप यदि दूध ठीक से ले रहे हैं, आप पनीर सोयाबीन ठीक से ले रहे हैं, आप जो है चना खा रहे हैं, आप अंकुरित चना, दाल, मेथी, ये सब चीजें खा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन और प्रोटीन और कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है। और गांव में इन सब चीज की भरपूर तादाद में ये सब चीजें उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मांसपेशियों को और हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसी तरह के फूड सप्लीमेंट्स जो कि आजकल धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
0: एकदम नहीं है, मैं सिरे से नकार रहा हूं उनको।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो खेलों को और एक्सरसाइज को इससे बहुत बढ़ावा मिल रहा है। जाहिर सी बात है, खेल ज्यादा होंगे तो चोटें भी ज्यादा लगेंगी। लक्षण किसी खेल से होने वाली चोट का, जैसे गांवों में कबड्डी बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्धि है इसकी, हर गली कुचे में आपको लोग बच्चे खेलते मिल जाएंगे, तो अगर कबड्डी का ही हम उदाहरण लें तो लक्षण क्या होता है? अगर आपको खेल के दौरान चोट लगती है तो उसका पहला लक्षण क्या होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या तब होती है कि जब चोट को नजरअंदाज किया जाता है और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
0: यदि आप फिट हैं और किसी खेल में उतरते हैं तो चोट लगने की संभावना उतनी ही कम होती जितना आप फिट होते हैं। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया का एक जो नारा दिया है, तो उनका इस उम्र में वो खुद से भी कितने कॉन्शस हैं एक्सरसाइज के लिए, इस उम्र में कितना काम कर पाते हैं, एक उदाहरण है लोगों के लिए। यदि आप अपनी शरीर की क्षमता बढ़ाएंगे, शरीर को अभ्यास करके और एक्सरसाइज करके क्षमता बढ़ाएंगे, तो चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि लग ही गई है तो जैसे कबड्डी आपने बताया, उसमें टखने में, एंकल ज्वाइंट में, घुटने में, और पकड़ते हैं तो कंधे में भी, इन सब में चोट लगने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। अब चोट लग दिखती तो है नहीं ये सब चोटें, तो जब भी आप खेल के बच्चा निकलेगा बाहर तो उसको लगेगा कि कहीं घुटने में या टखने में या कंधे में सूजन और दर्द है, ये सबसे पहला लक्षण होता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं, जैसे हम कोई खेल टीवी पर देख रहे हैं तो खिलाड़ी अचानक से खेलते खेलते या दौड़ते दौड़ते वो वहीं पर गिर पड़ता है और फिर उसको कुछ त्वरित, आप स्प्रे कह लीजिए या कुछ भी ऐसी चीजें ला करके लगाई जाती हैं, तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए खेलों में, ऐसे गांवों में अचानक से कोई अचानक से ग्रॉइन इंजरी हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, इसका तुरंत क्या समाधान किया जा सकता है जिससे जो उसका खेल जीवन है आगे का उस पर असर ना पड़े?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी और बाकी इंजरीज की ट्रीटमेंट में यह है कि बाकी इंजरीज में तो आदमी आराम भी कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी में यदि वो लिगामेंट, वो मसल, वो ज्वाइंट उसका इंजर हो गया तो वो उसका कैरियर है। एक तो उस खेल को इमीडिएटली जो टीम वहां पे डॉक्टर्स की है या जो फिजियोथेरेपिस्ट की है वो इमीडिएटली ऐसा करे कि वो खेल कंप्लीट कर पाए, पहला चीज उसके सामने तुरंत चैलेंज ये होता है, उसको पेनलेस कर दे, ज्यादा गंभीर चोट नहीं है तो ऐसा कर दे कि वो उस खेल को कंप्लीट कर ले, फिर आगे चल के वो चोट क्रॉनिक न हो जाए उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसा आपने एक कंप्रेशन बैंडेज दिया जाता है जिसको क्रिप बैंडेज या नी कैप कह सकते हैं या एंकलेट कह सकते हैं, और उसके अलावा उसमें तुरंत आइस कोल्ड चीजों से उसको पैक कर देना चाहिए और स्प्रेज आए जो कि पेन किलर होते हैं जिसके तुरंत उसको दर्द खत्म हो जाता है, वो अपना खेल कंप्लीट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक खिलाड़ी के लिए आपने जैसा कि कहा कि सबसे बड़ी चीज उसकी फिटनेस होती है, उसका फिटनेस ही उसका आगे का भविष्य निर्धारित करती है, ज्यादा से ज्यादा कोई चोट किसी खिलाड़ी को कितनी गंभीरता से लेनी चाहिए, उसको कब ये लगना चाहिए कि नहीं ये चोट जो है ये ज्यादा गंभीर है, या

0: ये चोट जो है मुझे जल्दी ठीक हो सकती है, मैं जल्दी मैदान पर वापस खेलने आ सकता हूँ। अब जैसे टेनिस एल्बो को ही ले लें, तो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए क्या ये इतना सामान्य बात है?
1: नहीं, हमें लगता है कि टेनिस एल्बो या एंकल की मोच, एंकल स्प्रेन, ये सब चीजें बड़ी माइन्यूट होती हैं अर्ली स्टेज में। यदि अर्ली स्टेज में इस पे यदि इसका ठीक से ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो हमें लगता है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यदि आपने इसको निग्लेक्ट किया, इसको क्रॉनिक रूप दे दिया, तब फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे आपने पूछा कि इन सब चीजों को न होने देने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
0: जी
1: कि यदि आपने अपनी मसल की लोड बढ़ा रखी है, मसल की कैपेसिटी बढ़ी हुई है, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। टेनिस एल्बो होगा नहीं यदि आपके हाथ की मांसपेशियां और एल्बो की मांसपेशियां मजबूत हैं। कमजोर हैं, लोड ज्यादा पड़ जाएगा, तब टेनिस एल्बो के सिम्टम्स आएंगे, देन आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब, गांवों में अगर हम अपने गांवों की बात करें, तो वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, तो अगर तुरंत कोई उपाय करना हो, कि मैं केवल खेलों की ही बात करें, जो गांवों के रोज के काम है जैसे चारा काटना या खेतों में जाना, उसमें भी केवल खिलाड़ियों को ही नहीं, जो किसान है उनको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है, त्वरित समाधान क्या है? क्या वो सीधे डॉक्टर के ही पास जाएं, और कोई विकल्प नहीं है इसका?
1: हमारी जो यंग जनरेशन जो गांव में है, मोटरसाइकिल चलाती है, ट्रैक्टर चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, हैवी मैनुअल वर्कर्स हैं, हाथ से भी पैर से भी काम करते हैं, तो उनके कंधे पे, उनके घुटने पे, उनके कमर पे और उनके एंकल ज्वाइंट में काफी चोटें आती हैं। तो इन चोटों को यदि बहुत माइनर ग्रेड की चोटें हैं, हल्की फुल्की चोट है, तो वो क्रिप बैंडेज और लोकल कुछ क्रीम लगाने से आराम हो जाता है। लेकिन यदि चोटें गंभीर हैं, वो चल नहीं पा रहा है या हर कदम पे, हर चाल पे, हर मूवमेंट पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसके लिए उसको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इसको बहुत आसानी से डायग्नोज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सरे में कुछ दिखता नहीं है, एक्सरे सब नॉर्मल होता है। तो इसके लिए फिर आगे जाके उसको बड़े सेंटर पे जाके उसका सीटी स्कैन, उसका एमआरआई, उसका अल्ट्रासाउंड करके किस लिगामेंट में कौन सी चोट ज्यादा है, कितने ग्रेड का टूटा हुआ है, ये उसकी डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए इवन एवरेज ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी उसके बारे में ध्यान देकर उसको पर्टिकुलर डायग्नोसिस बना के उस मरीज को बता देना कि आपकी ये बीमारी है। यदि बीमारी का पता चल गया तो इलाज बहुत साधारण।
0: क्या ये ऑपरेशन तक भी जा सकता है?
1: जैसे नी में बड़ी कॉमन इंजरी है एसीएल इंजरी,
0: जी,
1: इंटीरियर क्रूसेड लिगामेंट इंजरी,
0: लिगामेंट्स, यस,
1: लिगामेंट
0: जी,
1: इंजरी। तो ये इंजरी दवा से, बैंडेज से, पट्टी से नहीं ठीक होता। जब लिगामेंट टूट गया तो फिर घुटने में कमजोरी आ जाएगी और जितनी बार चलेगा, चढ़ेगा, उबड़ खाबड़ जगह चलेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, तो फिर उसका घुटना कमजोर हो जाएगा,
0: अच्छा,
1: वो गिर
0: कोई
1: भी सकता, और भी चोटें लग सकती हैं। इसलिए इसको बिना रिपेयर किए, बिना इसका ऑपरेशन किए, ये ठीक नहीं होता है।
0: अच्छा कोई ये पता कैसे लगाए कि लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है या सिंपल मोच है या फ्रैक्चर हो गया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साधारण चोट समझ लेते हैं, जो मतलब ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, हम उसको लगा करके या क्रेप बैंडेज या पट्टी बांध करके उसको जाने देते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, हम अवॉइड करते हैं उसको, तो जो ये डिफ्रेंशिएट कोई अलग कैसे करे कि नहीं, ये लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है, हमको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए?
1: इसकी सबसे सिंपल तरीका है, एक कॉमन, एक कोई भी आदमी इसको डायग्नोज करता है, कोई भी यदि इस तरह की चोट है जो कि सुपरफिशियल है, हल्की है, वो
0: जी
1: 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, इवन 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद यदि कोई सिम्टम कंटिन्यू कर रहा है, यदि आपको पेन बार बार वही इंटेंसिटी पेन की बनी हुई है, बार बार वो स्वेलिंग आ जा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब अंदर कोई डीप लिगामेंट में इंजरी है। 1 हफ्ते के बाद यदि आपको चोट बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, सूजन बनी हुई है, बार बार वही सिम्टम फिर से आ जा रहे हैं, इसका मतलब कि अंदर कोई गंभीर लिगामेंट की इंजरी है। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर को भी क्लिनिकली अपने तजुर्बे से एग्जाम करके भी देख सकता है, और नहीं तो फिर एमआरआई करा के उसको क्लियर करें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आज अपनी जीवन शैली की बात करें, तो शहरों में तो आराम पसंद जीवन शैली हो ही रही है, लेकिन साथ साथ गांवों में भी हो रही है। कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान खूब एक्सरसाइज करता है, खूब व्यायाम करता है, खेलों से जुड़ा हुआ रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अचानक से कभी कुछ उठते बैठते या नहाते धोते कुछ करते हुए ऐसा, जैसे नस जिसको स्लिप डिस्क हम कहते हैं, वो हो जाता है, इसका क्या कोई रोकने का उपाय है, कोई समाधान है, या फिर ऐसी चीजें वो होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी?
1: ऐसा नहीं, जैसा आपने कहा कि लाइफ स्टाइल चेंजेज हो गए हैं। पिछले जमाने में लोग मैनुअल वर्क करते थे, हाथ पैर शरीर से व्यायाम करते थे और काम भी करते, काम में भी काम, कम में व्यायाम हो जाया करता था। आजकल लाइफ स्टाइल गांव की भी, शहरों की भी, एक एक्सीडेंटल लाइफ स्टाइल हो गई है। मांसपेशियां धीरे धीरे, एक कहावत है कि यूज इट और लूज इट, यार आप किसी चीज का उपयोग करेंगे तो बढ़ेगी, नहीं करेंगे तो घटेगी। मांसपेशियां, लिगामेंट, इनका उपयोग नहीं होगा दैनिक क्रिया में तो ये धीरे धीरे

0: डिजनरेट हो जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। तो जब ये चीजें कमजोर हो जाती हैं तो स्लिप डिस्क की सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जब वहां के उसके आसपास के जो लिगामेंट्स, उसके आसपास की मसल्स कमजोर हो गए तो वो एक जगह मिलता है, वहां से स्लिप डिस्क स्लिप होकर निकल आती है। तो इसलिए यदि आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत हैं,
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: काम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो आपकी स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत कम है।
1: अच्छा, और जो कॉमन चोटें हैं जो अक्सर हुआ करती हैं खिलाड़ियों को, वो है कंधे और टखने की चोट।
0: जी
1: तो उसमें भी क्या ये इतनी आसानी से ठीक हो जाती है? क्योंकि एक बार जब खेल में आपका फॉर्म बिगड़ता है, आपका तारतम्य टूटता है, तो फिर वो भी आपके करियर पर असर डालता है।
0: सही कह रहे हैं। कंधे में बैंकार्ड एक लिगामेंट होता है, बैंकार्ड एक कंधे की चोट और टखने की चोट, एंकल स्प्रेन, ये दोनों यदि शुरू में थोड़ा मोड़ा है तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि क्रॉनिक हो गए और ज्यादा ग्रेड के हैं तो फिर इन सबका ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके खेलकूद के करियर पे भी उसका इफेक्ट होता है, तो इसको ऑपरेशन करके ही रिपेयर किया जाता है, जिसको बैंकार्ड रिपेयर कहते हैं, कंधे वाले को। और एंकल ज्वाइंट के जो लिगामेंट टूट गए हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको भी क्रॉनिक ऑपरेशन करके रिपेयर कर दिया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड में जैसे खिलाड़ी अपना फर्स्ट एड साथ में लेकर के चलते हैं, अगर गांवों में जो आपके हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हमेशा साथ में रखें, कुछ ऐसी इंजरीज हों या मसल पेन हो जो उनको तुरंत निजात दिला सके?
0: एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हर जगह जहां भी खेल कूद का काम हो रहा है,
1: जी
0: उसमें आइस हो,
1: जी
0: क्रिप बैंडेज हो, नी कैप हो,
1: जी
0: कुछ इंजेक्शन हो, पेन किलर कुछ लगाने के लिए स्प्रे हो, कुछ टैबलेट्स हो, एक फर्स्ट एड बॉक्स बना रहे तो उससे इमीडिएट रिलीफ दिया जा सकता है, उसके बाद फिर उसको किसी हायर सेंटर पे अच्छे डॉक्टर के पास भेजा जा सकता
1: तो
0: है।
1: श्रोताओं, ये थे डॉक्टर केडी त्रिपाठी, जो कि जानकारी दे रहे थे खेल कूद में लगने वाली चोटों और उनके उपचारों के ऊपर। जैसी कि कहावत डॉक्टर साहब ने बोली कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो अब पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर हम किसी विशेषज्ञ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
2: हाँ रानू भैया, देखा जोन परिवार कल्याण की बात में डॉक्टर
3: हाँ
2: केडी त्रिपाठी भैया से अभिनव प्रज्ञ पांडे का बातचीत जोन रही।
3: हाँ
2: भाई
3: हाँ
2: किसान भाई सुने हुए ही और साथ ही साथ यह समझे हुए ही कि खेल कूद में जोन चोट लग जाता,
3: हाँ हाँ हाँ
2: कैसे उम्मन भैया समझा जाए कि वो चोट ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, ओकर प्रभाव न पड़े कि भाई आपन जोन दैनिक दिनचर्या बा वो
3: हाँ
2: प्रभावित
3: हाँ
2: ना हो।
3: हाँ
2: साथ ही साथ रानू भाई देखा, ई तो खेल कूद में चोट लग जाता
3: हाँ हाँ हाँ
2: पर जोन खेती किसानी के काम होत बाटे या ऐसे राह मेड़ चलत बहुत चोट लग
3: हाँ
2: जाता,
3: मोच लग
2: किसान
3: जाता
2: भाई के
3: है
2: मोच
3: ऊपर
2: लग
3: नीचे।
2: जाता, कुछ लग
3: हाँ
2: जाता, तो भाई अगर ऐसा कौनो स्थिति आवत है कि मोच लग गई और तमाम तरह का घरेलू उपचार किया गया मगर सही नहीं भाई, तो
3: हाँ
2: भाई ये समझे के पड़ी कि वो चोट जोन बाटे वो अंदरूनी चोट बाटे,
3: हाँ हाँ
2: ओका जो है का नाम बा दरकिनार न करें, ओका जो है ऐसे छोड़ न दें, जाएं जोन विशेषज्ञ भैया हैं, डॉक्टर भैया हैं, उनका दिखावें, तब भाई वो सही होए।
3: ये तो बात एकदम सही कह भैया। काहे कि देखे जोन चोट है वो का है कि आगे चल के भैया वो नुकसान करत
2: हाँ
3: है।
2: उसे दैनिक
3: हाँ
2: दिनचर्या जोन बाटे वो आपका
3: हाँ
2: प्रभावित
3: कभी
2: हो, खेती किसानी का काम प्रभावित
3: हाँ
2: हो, तो भैया देखो तमाम तरह के चीज बताएं इसमें, केडी
3: हाँ
2: त्रिपाठी भैया बताएं कि कौन कौन सा चोट लगा था, चाहे वो घुटना का चोट भाई, चाहे वो कंधा का चोट भाई, सर पे
3: हाँ
2: लग जाता, तो भाई अगर एक तरह का कोनो चोट खेल कूद में लगा या ऐसे ही वो आपके लग जाए तो भाई
3: हाँ
2: सबसे बढ़िया चीज बाटे कि डॉक्टर भैया से संपर्क करें, उनसे इलाज करावें।
3: और एक चीज़ भैया और ध्यान देवे के हुई हो सुमरन भैया,
2: हाँ रानू भाई
3: कि भैया हर घरे में फर्स्ट एड जरूर होए के चाहिए।
2: हाँ प्राथमिक चिकित्सा जोन बाटे
3: हाँ हाँ
2: वो
3: हाँ
2: कुछ नहीं तो भैया कम से कम डिटॉल होई के चाहिए या कोनो ऐसा चीज जैसे आप
3: हाँ
2: धुल
3: हाँ
2: सकें अपन घाव जोन बाटे,
3: हाँ हाँ हाँ
2: घाव के धुल के साफ कई के
3: हाँ
2: भाई कम वो मन कुछ संक्रमण न पैदा होए, कोनो
3: हाँ
2: रोग बिरामी न लग जाए, तो धोवई बरे कुछ चीज आप रखे रहें अपने साथ
3: हाँ
2: है।
3: भैया पेन की दर्द का दवाई रहे भैया, कुछ
2: हाँ
3: ट्यूब रहे, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है।
2: अच्छा
3: अच्छा
2: देखा ई तो बात बत कही हमारे पचन का होत बाटे,
3: हाँ हाँ हाँ
2: हमार मन रानू भाई रहा कि पंच भैया के चलत चलत ना एक ठे दादरा सुनवाई दिया जात बटे, तो
3: ठीक हो
2: एक
3: भैया।
2: दादरा बाटे उमेश चंद कन्नौजिया का,
3: हाँ
2: हम
3: हाँ
2: कहीं
3: हाँ
2: आपो सुने और पंच भाइयों सुने।
3: सुनवाए दें भैया।

0: देखो हो सुमरन भैया, क्या हमसे एक है दादरा रहन उमेश चंद कनौजिया भैया का, बहुत बढ़िया गायन भैया। अच्छा एक बात यह है कि देखे गर्मी चलत है तो गर्मी में भैया किसान भैया बहनी हरन के बात भय, लैका गदेला के बात भय, बात भैया अपने पशु परानी का भी हो।
1: एकदम भैया एकदम
0: जरूरी ये है कि भैया देखे वो तो बोलता है न और ये गर्मी मगर उन्हें प्यासो लगता है तो के उसे कहीं ना पाई।
1: एकदम भैया।
0: तो भैया किसान भैया बहनी हरन के ये जरूर चाहे कि उनकी जो उन पानी के व्यवस्था है वो भैया ताजा पानी पियावें, और साथे साथे भैया जो उन किसान भैया बहनी हरे ये समय कम से जानवरन के अपनी हरा चारा खियावत हैं तो भैया ओकर जरूरी ये है क्योंकि काट के लेके आवें रख दें, बल्कि अगर व्यवस्था रहे तो के भिगो दें सवेरे बालें ओकरे बाद वो काट के।
1: नहीं बात सही कहा, जो तपन रहा था ना
0: हाँ,
1: इसे ताजा काट के ले आऊ और तुरंत ही अगर दराही डाल दे ही
0: हाँ,
1: तो जो तपिस रहा था भैया उसे तबियत खराब हो जाता जानवरन की, तमाम तरह का जो गर्मी होता
0: हाँ,
1: उस सर पर चढ़ जाता, बहुत नुकसानदायक होता
0: अच्छा एक बात और है
1: ये
0: समय भैया ये है कि भैया जो जानवर अपन बांधे हैं ओकर बहुत ध्यान ही रखे कि भैया छाहे बांधे और साथे साथे ऐसा जगह बांधे का है कि भैया ये गर्मी में भैया देखे कभों कभों दो राजा गड़बड़ाई जाते हैं तो तेज तूफान आवता है तो भैया ऐसा जगह बांधे रहे जहाँ भैया मड़ई उड़ई गिरे के चांस न रहे।
1: अरे एकदम भैया देखे ढाक तोप के रखी अच्छे
0: हाँ,
1: से बढ़िया से रखी
0: हाँ,
1: तब भैया चार पैसा का आमदनी होए।
0: हाँ,
1: अच्छा देखे चला चली की बेला बाटे तो भैया एक चीज और हम कह दे कि आपन पचन का जो कार्यक्रम बाटे पंचायत घर
0: हाँ,
1: इसे संबंधित कोनो सवाल बाटे या आपके
0: हाँ,
1: कोनो
0: हाँ,
1: प्रतिक्रिया बाटे
0: हाँ,
1: या कोनो आपके सुझाव बाटे
0: हाँ,
1: तो एक ठे व्हाट्सएप नंबर बाटे 800-4926-250
0: हाँ एक
1: भैया
0: बार भैया
1: फिर से बोल
0: सुन
1: देते
0: ले
1: 800-4926-250
0: हाँ
1: भैया ए पर अपन संदेश प्रतिक्रिया सुझाव दे सकते हैं। तो हम कहीं देखा चला चली कि बेला तो भाई बाटे पंच भैया देखा अब आज्ञा लीन जाए तो भाई पंचों

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम सुनिएगा संस्कृति भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा राजेश मिश्र की वार्ता रविन्द्रनाथ टैगोर और उनका भारत। चित्रपट संगीत 8 बजे और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रोफेसर अली अहमद फातमी और मोहम्मद शमीम की भेंटवार्ता होगी। रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में, और 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है में सुनिएगा प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव का लिखी झलकी भंडाफोड़। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर मनोज कुमार से की गई बातचीत पशुओं में गला घोंटू की बीमारी, और 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता होगी गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे 7:30 पर शमशाद अहमद खां उप शास्त्रीय गायन, और 12:15 पर पंडित रविशंकर

उपाध्याय का पखावज वादन 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कल्याणी मुखर्जी से गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगे हरविंद कुमार यादव और वत्सला मनोहर देवधर। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगी बीना रानी श्रीवास्तव, राजा राम यादव और सूर्य प्रकाश पटेल। 11:15 पर बाल संग कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे निधि खन्ना की कहानी।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता, संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेल

0: प्रतियोगिता हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय या 3 दिन का कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
4: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
5: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000

0: रुपया भी दिया जा रहा है 50,000 रुपए के लिए। हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेशभर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए राजेश मिश्र की वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर और उनका भारत।
3: भारत की सांस्कृतिक चेतना मानवीय मूल्यों और राष्ट्रवाद की उदात्त भावना को यद किसी एक व्यक्ति ने शब्द संगीत और विचारों में सजीव रूप दिया तो वह नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। वे केवल एक कवि नहीं थे अपितु एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और विश्व मानव के प्रतीक थे। उनका भारत किसी संकीर्ण राष्ट्रवाद का नहीं बल्कि व्यापक मानवता और आत्मिक स्वतंत्रता का भारत था। उनका भारत संकीर्णता से मुक्त, ज्ञान से परिपूर्ण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और मानवता से ओतप्रोत था। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। वे ऐसे समय में उभरे जब भारत ब्रिटिश दासता से जूझ रहा था। उन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीय आत्मा को जागृत किया। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे न केवल

केवल प्रथम भारतीय अपितु प्रथम एशियाई एवं प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से न केवल गुरुदेव को अपितु भारतीय साहित्य को भी विश्व मंच पर पहचान मिली और देश का गौरव बढ़ा। आपने साहित्य के विविध आयामों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सभी विधाओं में समान अधिकार से लिखा और अमिट छाप छोड़ी। आपकी रचनाएं केवल साहित्य ही नहीं अपितु जीवन का दर्शन है, जो हमें सिखाती है कि जीवन को प्रकृति, प्रेम और

पाठकों को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास भी भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक चित्रण, सामाजिक सुधार, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रवाद की आलोचनात्मक समझ पर केंद्रित है। आपके प्रमुख उपन्यास गोरा, घरे बायरे, चौखेर वाली हैं, जो मानव संबंधों की जटिलता को दर्शाते हैं। टैगोर ने बांग्ला साहित्य में नाटकों की एक नई विधा को जन्म दिया। उनके नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं अपितु दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों से भरपूर होते थे। इनके प्रमुख नाटकों में विसर्जन, डाकघर, मुक्तधारा, अचलायतन, चित्रांगदा आदि उल्लेखनीय हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ भारतीय जीवन, समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियों में भारत केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक जीवंत चरित्र के रूप में उपस्थित। उन्होंने भारतीय समाज की अच्छाइयों, कमजोरियों, परंपराओं, ग्रामीण जीवन, नारी की स्थिति, मानवीय संबंधों और सामाजिक विषमताओं को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। प्रमुख कहानियों में पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, छुट्टी, अतिथि, स्त्री पत्र आदि उल्लेखनीय हैं। और अब बात उस गीत की जिसे 1911 में लिखा गया और जिसे गाकर हिंदुस्तान का हर बच्चा बड़ा होता है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे पहली बार 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वयं गुरुदेव ने स्वर दिया था और जो स्वतंत्रता के उपरांत 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। आज यह गीत प्रत्येक भारतीयों के हृदय की धड़कन है। यह गीत भारत की विविधता, एकता, भूगोल और संस्कृत को एक सूत्र में पिरोता है। भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी आपकी ही रचना है। इस तरह एक नहीं दो देशों का राष्ट्रगान लिखने की गौरवशाली उपलब्धि आपके नाम ही है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर बहुआयामी व्यक्तित्व मेधा के धनी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है, जो उन्हें शिक्षाविद के रूप में भी ख्याति दिलाता है। शिक्षा में अपने विचारों एवं दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के पास शांति निकेतन की स्थापना हुई। 5 छात्र और 5 शिक्षक के साथ शुरू किए गए इस आश्रम में प्रकृति को श्रेष्ठ शिक्षक माना गया, इसलिए पेड़ों के नीचे कक्षाएं चलती थी। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में उनका विचार था, बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के साथ राष्ट्रीयता व आध्यात्मिकता का भी विकास किया जाना चाहिए। वे शिक्षा को राष्ट्र जागरण का स्रोत मानते थे। उनका मानना था कि छात्रों में भारतीय विचारधारा, दर्शन और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुदेव ने अपने देश की भाषा संस्कृत के साथ अन्य देशों की भाषा संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया। टैगोर का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद, रहस्यवाद, विश्व बंधुत्व, आध्यात्मवाद, मानवतावाद व अंतर्राष्ट्रीय अवबोध पर आधारित था। शांति निकेतन को चलाने में गुरुदेव को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे अपने नाटकों का मंचन करके राशि इकट्ठा करते और उसे शांति निकेतन पर खर्च करते, लेकिन अपने अथक प्रयास से 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। इसकी स्थापना के समय गुरुदेव ने कहा, स्वदेशी व विदेशी छात्र जहाँ किसी पूर्वाग्रह के भारतीय मन का सत्य समझ सकें, ऐसा एक भी विद्या केंद्र देश में नहीं है। विश्व भारती के रूप में मैं उसका निर्माण कर रहा हूँ। शीघ्र ही विश्व भारती विश्वविद्यालय में इसके नाम एवं संकल्पना के अनुरूप विश्व भर के छात्र अध्ययन हेतु आने लगे, जिसमें चीन और जापान के बहुत से छात्र थे, जिसके कारण परिसर में एक चीनी भवन का भी निर्माण किया गया। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख लोगों में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त सेन, महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय, प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस, प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज, प्रसिद्ध चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रख्यात गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता, प्रसिद्ध चीनी विद्वान तन युन सान एवं इतावली विद्वान ग्यूनसे पेतुची उल्लेखनीय। टैगोर के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक प्रमुख क्षेत्र चित्रकला का भी है।
जिसमें उन्होंने

0: 60 वर्ष की उम्र के बाद कार्य प्रारंभ किया और अंतिम 15 वर्षों में लगभग 2500-3000 कलाकृतियाँ बनाकर आधुनिक भारतीय कला को नई दिशा प्रदान की। बिना किसी अनौपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने सहज और प्रयोगात्मक शैली विकसित की जो उनके साहित्य से बिल्कुल अलग गहरी भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। गुरुदेव ने अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी फ्रांस के पेरिस व यूरोप के अनेक शहरों तथा सोवियत रूस और अमेरिका में प्रदर्शित करने वाले पहले कलाकार थे। संगीत के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय संगीत को नई शैली, नई संवेदना और आध्यात्मिक गहराई प्रदान की। उनके द्वारा रचित संगीत को रवींद्र संगीत कहा जाता है। आपके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। टैगोर ने संगीत को मनोरंजन का साधन नहीं माना बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम समझा तथा उसे साहित्य और दर्शन से जोड़ा। टैगोर का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन लिखा और स्वयं स्वरबद्ध भी किया। उन्होंने बंगाल के बाउल संगीत, वैष्णव पदावली तथा भारतीय रागों को अपनाकर उन्हें आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। शांति निकेतन में उन्होंने संगीत और कला को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया। उनका मानना था कि संगीत मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध और मानवीयता विकसित करता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के कारण विश्व भर में अनेक सम्मान प्राप्त हुआ। उनके सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थे अपितु भारतीय संस्कृति और साहित्य की वैश्विक प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। 1913 में नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने सम्मानपूर्वक उन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित किया जो उनके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व का प्रतीक बन गई। टैगोर को अनेक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि प्रदान किया। गुरुदेव को विश्व कप के रूप में भी सम्मान मिला क्योंकि उनके विचार पूरी मानवता को संबोधित करते थे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता संग्राम में भी अमूल्य योगदान है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीय संकट के समय उन्होंने देशभक्त की भावना से ओतप्रोत अनेक गीत व लेख लिखे तथा भाषण दिए जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की घोर निंदा की। टैगोर ने बंगाल की जनता को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल अर्थात बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी लिखा। उन्होंने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला इसी समय लिखा जिसने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रज्वलित की। इसी समय टैगोर का प्रसिद्ध प्रेरणादायी गीत तोर डाक सुने केऊ न आसे तबे एकला चलो रे लिखा जिसका अर्थ है न्याय और संघर्ष के पथ पर जब कोई साथ ना आए तो अकेले चलो। उन्होंने राखी उत्सव की शुरुआत की जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर रंग बिरंगे धागे बांधकर एकजुटता प्रदर्शित की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के रोष एवं क्रोध को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यह उनके राष्ट्र प्रेम और नैतिक साहस का महान उदाहरण माना जाता है। टैगोर एक महान राष्ट्रवादी विचारक भी थे लेकिन उनका राष्ट्रवाद सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। वे आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनके अनुसार भारत की पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता में निहित है। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बौद्धिक क्षमता तथा विशिष्ट गुणों का विकास करते हुए उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। टैगोर का विचार आज के भारत के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है क्योंकि उनके विचार कट्टरपंथी राष्ट्रवाद, सामाजिक विभाजन और परीक्षा केंद्रित शिक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। जलवायु संकट के दौर में टैगोर का शांति निकेतन का विचार जो मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम उनके विचारों को अंश मात्र भी अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रेम, शांति और मानवता सर्वोपरि। यही गुरुदेव का संदेश है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश मिश्र की वार्ता रविंद्रनाथ टैगोर और उनका भारत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं मीनाक्षी दास। पहले सुनते हैं इनसे गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं मीनाक्षी दास। आइए सुनते हैं इनसे एक और गीत।

मीनाक्षी दास के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं नमस्कार। आज है भारत के महान साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। ये केवल एक कवि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक ऐसी विराट पहचान थे जिन्होंने अपनी लेखनी से पूरी दुनिया को मानवता, प्रेम और प्रकृति का संदेश दिया। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी। कविता, कहानी, उपन्यास, संगीत, चित्रकला शायद ही कोई कला हो जिसमें उन्होंने अपनी अमिट छाप न छोड़ी हो। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। वे मानते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती बल्कि प्रकृति और जीवन से जुड़ी होनी चाहिए।

श्रोताओं, गुरुदेव ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसे आज शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिक्षा खुले वातावरण में दी जाती थी, ताकि विद्यार्थी प्रकृति से जुड़कर सीख सके। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को संवेदनशील और स्वतंत्र बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य को नई ऊंचाइयां भी दी। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने। ये केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की गौरवपूर्ण उपलब्धि थी।

श्रोताओं, गुरुदेव की रचनाओं में देश प्रेम की गहरी भावना दिखाई देती थी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन उनकी ही अमर रचना है। साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा। यह सम्मान विश्व में बहुत कम साहित्यकारों को प्राप्त है। गुरुदेव प्रकृति प्रेमी थे। नदी, पेड़, पक्षी, ऋतुवे सब उनकी कविताओं में जीवंत दिखाई देते हैं। वे कहते थे, प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें सिखाता है कि कला, साहित्य और शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि मनुष्य को बेहतर इंसान बनाना भी है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वर्षों पहले थी। गुरुदेव को उनकी जयंती पर शत शत नमन।

छत्रपट संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म अलग अलग में गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गाना, आवाज़ है कुमार सानू की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम, और अब आइए सुनते हैं तलत अजीज को का ये गीत।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासांको ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीट जीतकर

0: सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री

0: सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप,

0: When reports last came in, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. With support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा 5 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानूनसाज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिल गवयत्री कड़गम टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 अरकान असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया।

0: हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहाद से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय 2 असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वक़ार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू हो मुझ से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धूंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है, और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करे जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीज।

क्षमा करेंगे, मुझे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं। शायद बहुत लोगों को अखरेगा इस मामले में, मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था, उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से, उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने अपने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने
जो फोक भी नहीं थे, यानी सब

0: से पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था, कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100 100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारत

0: के मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें

0: उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
1: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
2: मेरा नाम साक्षी है और मैं भालुगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भालुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
3: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
0: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों

0: से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
1: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ

0: टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
1: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jan Sammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11:10